गुरमुख हुए सो सूझी पाई, हम मैं माया परम गवाई। गुर की पौड़ी उत्तम उची, दर सच्चे हर गुण गाईंदा। गुरमुख सच संयम करनी सार, गुरमुख पाए मोख द्वार। पाए भगत सदा रंग राता, आप गवाए समाईंदा। गुरमुख हुए मन खोज सुनाई, सच्चे नाम सदा निभलाई। जो तिस भावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाईंदा। जां तिस भावे सतगुरु मलाई, जां तिस भावे ता मन वसाई। अपने भाणे सदा रंग राता, भाणे मन वसाईंदा। मन हथ कर्म करे सो सीजै, बहुते भेख करे नहीं पीजै। भिखिया राते दुख कमावे, दुखे दुख समाईंदा। गुरमुख होए सो सुख कमाए, मरण जीवन की सोझी पाए। मरण जीवन जो सम कर जाने, सो मेरे प्रभ पाईंदा। गुरमुख मरह सो है परवान, आवन जाना शब्द पछाण। मरै न जम्मे ना दुख पाई, मन ही मन समाईंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचोह मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाईंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेख थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेख पाईंदा। गुरमुख सचो सच कमावे, गुरमुख

भव भागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाय मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्त

सेवह क्यों सुख पाइय बिन नावह दुख पाइंदा आप करे न आप कराई गुर प्रसादी किसे बुझाई

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा। हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आग्या मोह ना चूकै माया, अग्गै जम काल लेखा लेवै, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा। पूरै भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवै, महल सच्चै सुख पाएंदा। तिन सुख पाया जो तुद पाई,

निःचलवासा पाईला। अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरलै किने थान पाया। इत साथ निभै सलाही सच्ची, हर सच्चा।

अनदिन हर सेवे हो सच्ची बाणी, हर जियो शब्द मलाएंदा, हर चेत है तिन बले हार है जाऊं, गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं, तिन की धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाएंदा, हर के गुण गावां, जे हर प्रभ पावां, अंतर हर नाम शब्द सुहावा, गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए, साचे नाम समाएंदा, सो जन साचा जे अंतर पाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले, ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदनी नदर मलाएंदा, वड्डे भाग एहो शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया, बिन शब्द है सब अंध अंधेरा, गुरमुख किसह बुझाएंदा, एक कित आए जन्म गवाए, मनमुख लागे दूजे पाए, एह वेला फिर हाथ ना आवे, पग खिसे

आई हित रंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमति रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अपमान।

समाई गुर प्रसादी पाया जाई आपे मेल मलाए आपे शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चों परम चुकाई।

रस नह हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्द आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला हा पाया।

सारा मनमुख अज्ञानी अंधारा धंधे धावत जन्म गवाया बिन नाव है दुख पाया कर्म होवै तां सतगुर पाए हौ मैं महल शब्द जलाई मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई।

मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चे ना इस माया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

मुक्त होवे। पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवह शब्द प्यारा, सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माही समाया, घरे अंदर को घर पाई, गुर कै शब्द सहज सुपाई, उथे सोग वजोग न व्यापे, सहजे सहज समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिर बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पाव है, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन शब्द

राम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत होए जे गुरमुख रह सरनाई गुरमुख प्रीत सदा है साची सतगुर ते मांगो नाम अजाची हो दयाल कृपा कर हर जियो रख ले वो गुर सरनाई अमृत रस सतगुरु चवाया दसवें द्वार प्रगट होए आया तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी सहजे सहज समाई है जिनको करतै तुर लिख पाई अन दिन गुर गुर करत विहाई बिन सतगुर को सीजै नाही गुर चरणी चित लाई है जिस भावै

ज्ञान रतन मन प्रगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडे आई गुरते पाई, सतगुरु कहो सद बल जाई। प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा, अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी,

सदा मन बिबसै हर चरणी मन लाई। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाई, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा करा हर जीव, सतगुर की सेवा लाई। जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता, सर्वे राव रहया सुख दाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई। जिनको आद मिली वड्याई, सतगुर मन वसया लिवलाई। आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अबनासी। सर्वे रव रहया तटवासी, तिस बिन अवर न कोई दाता। हर तिस ऐसरे वो प्राणी है, जां को राखे हर राखन हारा। ताको कोई ना साख समा

भरपूर समाही सूके ते फुल हरिया की तन हर त्याव हो चोज वडाणी है जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हों कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी है जो जिया की सार न जाने तिस स्यों किछ न कहिए अजाने मूर्ख स्यों नह लूज पराणी हर जपिए पद निर्वाणी है ना कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल जनता सबते अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखानी है ना करे आस मीत सुत पाई ना करे आस किसे सहा व्यवहार की पराई बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पानी है अन दिन नाम जप हो बनवारी सब आसा मनसा पूरे थारी जन नानक नाम जप हो भव खंडन सुख सहजे रैन विहानी है जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परै तिसकी पात राखै जाए पूछो।

गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी हे। तू सब मह वर्त है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्त कहाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय तरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रव राखे पाई हे। जी जंत को रिजक संबाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई हे। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्ब सुधारण, किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, मात पिता सुत बंधप पाई, जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पहो नहीं करना, साध संगत निश्चो है तन्ना, मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पविया, दुख बनास किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई हे। मीत हमारा सोई स्वामी, तान तनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूर्ण परमेश्वर, चिंता गणत मटाई हे। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई हे। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वसो हो घर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई हे। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊच अथाह अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई हे। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा

बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में है सोभ सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है, मारू सोले महला पंजवा।

ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगी तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिया सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हों कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कह आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु न समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो छूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचरना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर वेख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरा, हमयो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होए, देह दान सबसे जंत लोए, टूट न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आगे जाहे, जाके है सिद्ध साधक बनवासी, जाके है जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे, करह भगत अर रंग अपारा, खिन मैं थापयो थापन हारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगति जाहि, जिस देह दर्स सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतुर

जिस चीते आवह तिस भौ केहा हवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरे लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे अमर भया बनासी थीवे। ना को आवे ना को जावे गुरदूर किया परमी जाहे। पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माहे समाणी। चढ़े सवाया नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहे। बारह कंचन सुध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

स्मृत घट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगाह देवै मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखानी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किस करे सो आपन पाने। साधु तूर जाचह जन तेरे, नानक सद कुरबाना। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रव निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस कहो प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवै तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिसह बुझाएंदा। हरख सोग का नगर एहु किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया। त्रिहां गुणा ते रह निरारा, सो

श्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आपे आप आप प्रवथिया आप उपाय रच्यों पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक घर बारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

जन्म मरण की मिटवी दंजा, कर गह काड लिए प्रभ अपने, हमें उतार दृश टंगना, एको एक रव्या सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाई, आद मादे अंत प्रभ रव्या, कृष्ण बुझी परमंगना, गुर परमेश्वर गुर गोबिंद, गुर कर्ता गुर सद बख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना, जो पेखा सो सब किस स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुमह करायो, शरण सहाई संत है तना, जाचक जाच है तुमह अराधे, पतत पावन पूर्ण प्रभ साधे, एको दान सर्व सुख गुण निद, आन मंगन निह किंचना, काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बणी हर बाणी, मन नाम मजी ठहरंगना, सोलह कला संपूर्ण फलिया, अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया, आनंद बनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना, मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू साहिब हो सेवक कीता, जियो पिंड सब तेरा दीता, करन करावन सब तू है नाहीं किस असाड़ा, तुम्हें पठाए ता जग मह आए, जो तुझ पाणा से कर्म कमाए, तुझ ते बाहर किशु ना हुआ, ता भी नाहीं किस काड़ा, ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहां हर जस तेरा भणिए, आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा, तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खलावे है त्यो खेलन हारे, उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा, एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर, एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा, कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन संसारी कमन सो भगता, कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा, हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता, हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा, सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़ेर सातल कर मनमुख गावारा, एक ना पार लंगा वह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा, कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जी जंत उपाए समाया, विखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड्डा तार वड्डी जिस जाई, अगम अगोचर बेअंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा, कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा, आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा, केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया, केतड़िया दिन धुंधू कारा, आपे करता प्रगटड़ा, आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरताई नियंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसह नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकराई, तिसह न आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही ना जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसह कह निबेड़ा, तिसह शरीक नाही रे कोई, किस ही बुते जवाब ना होई, नानक का प्रभ आपे आपे, कर कर वेखै चोज खड़ा, मारू महला पंजवा, अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी, मधुसूदन दामोदर स्वामी।
रिखि केश गोवर्धन तहारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनुपया सहस नेतर मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा निराहारी निरवैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे देन सुनत सब मोहेगा बनमाला बेभूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत न आवै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाही आप हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सहस फनी सेख अंत न जाने नवतन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर राख हो साध संतन कह संग संगा दृष्ट मान है सगल मतेना एक मांगो दान गोविंद संतरेना मस्तक लाए परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्स मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भावे है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा मार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारपत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर ना मरा करान कतेब दिल माहे कमाही
दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बंद हो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करहु दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल मह जानहु सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथे खैरी, पंजवे पंजे इकत मकामे, एह पांज वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक बुझ देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोरो खाना, दिल दरियाओ तो वो मैलाना, पीर पछाणे पिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना, नपाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा, जा को मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाए कहाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करन करीमा, सिफत महबत अथाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बराजी, आपे थापे थापे साजी, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किस भौ न व्यापै बालका, गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया, रक्त किरम मह नहीं संघारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओहो सगल कटा का मालका, चरण कमल सरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख नवारी, जप हर हर भौ नहीं काल का, समरथ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब तां की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु परकारी पालका, तिसह प्राप्त

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरे दास अपारी। तेरा रंग रते तुद जेहे, विरले के पाल का। तिनकी धूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरह नाही काहू बेरा। तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का। साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई। काम क्रोध अहंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का। तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का। सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई।

सतगुर प्रसाद चरण कमल हृदय नित तहारी गुरपूरा खिन खिन नमचकारी तन मन अर्प धरी सब आगे जग मह नाम सुहावना सो ठाकर क्यों मनहु वसारी जियो पिंड दे साज सवारी सास ग्रास संभाले करता कीता अपना पावना जाते बिरथा को नाही आठ पहर हर रख मन माही साध संग भाजे चुत स्वामी दरगाह शोभा पावना चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नाम निधान सहज सुख नौ निद

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कण को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कै नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाई है किसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापे माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरले ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जात कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मनावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

पहला विण गाहक गुण वेतिया तौ गुण सहगो जाय गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख बकाई गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहि समाय मोल अमोल ना पाई है वंजना लीजै हाथ नानक पूरा तोल है।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

हीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निहकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चै तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यों बने आई ऐथै सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर स्यों प्रीति उपजी गुर सोजी पाई सलोक महला पहला भूली भूली मैं फिरी पादर कह ना कोए पुछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोई सतगुर साचा मन वसै साजन उत ही ठाए नानक मन त्रिपतासी है सिफती साचै नाए महला तीजा आपे करनी कार आप आपे करे रजाए आपे किस ही बख्श ले आपे कार कमाए नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी माया वेख ना भुल तू मनमुख मूरखा चलदिया नाल ना चलई सब झूठ धर्म लखा अज्ञानी अंध ना बूझई सिर उपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चखा।

सहज बनस्पत फुल फल भंवर वसै पै खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मने सिउ से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानियां का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत न जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग भवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोई ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोई किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोई सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड्याई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे

सेव गति गए। मर जन्म है फिर आवे है सलोक महला तीजा। कागो हुए न उजला लोहे नाव न पार। पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार। कृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार। नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया।

आप आपे नदर करे आपे देवड़े आईया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजे सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास इश्क महबत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जो ए मधुकड़ो सारंग पान सबाई हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे खिन मह मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छामणी सब तुद लागे सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लांगनो लाभ ना पूंजी सात महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम एक आपे परम पलायन तिन निफल काम इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम इकनी सुनके मन्या हरे उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै हिकै पद रहीद अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीद महला पहला मांदल भेद से बाजणु कणु तड़िया जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा मज भर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाए दे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे धर्म राय तिनका मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे सलोक महला पहला सुनिए एक बखानिए सुर्ग मृत पयाल हुक्म ना जाई मिटिया जो लिखिया सो नाल कौन मुआ कौन मारसी कौन आवे कौन जाई कौन रहसी नानका किसकी सुरत समाए महला पहला हों मुआ मैं मारिया पौन वह दरियाओ तृष्णा थकी नानका जा

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस युग में नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिख विहाज है बिख संग्रह बिख स्यों तरह प्यार बाहर हो पंडित सदाएं दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाएनी वादी तरन प्यार वादा किया करन कहानिया कूड़ बोल करह आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम पलाया हौं मैं दुख पाही बिन कर्मा किछु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखीए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाए भुख लखी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भुख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधार है सहसा कदे ना जाय। नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाए रहो तिस बिन अवर ना कोए खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझिए जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याईए हम मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना व्याजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याय गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याय अमृत का रस आया
मन वसिया नाहु सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराहे नानक सोहंग हंसा जप जापहु त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना भालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अगै नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुकै जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धार सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसरै मांगै दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवै नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलै क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक किस शरणागती जिन जग ते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं भय की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखी है जे बूझ ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अगे जात ना पुछी है करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा तिवही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवा दखणे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवा
नीहो मिहिंजा तौ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख। महला पंजवा उठी चालू कंतड़े हो पसी तौ दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हव रस चार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या होए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नावखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जनते उपाए अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया। तू जान है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो मिहिंजा तौ मोहया कद पसी जानी तोहे। महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे। महला पंजवा दुर्जन दूजा भाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुद अपड़ कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुद आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवे है आप दयाल तिस लावे है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई। महला पंजवा थबे टोल सहावणे सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजे बिरथड़ा जो घर आवे चल। महला पंजवा सेज वछाई कंत को किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी। तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत दिखावही तेरी भगत भरे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवे है आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही किस कदे ना आवे तोट जो हर गुण गावही। दखणे महला पंजवा जामू पसी हठ मैं पिरी महिंजे नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल। महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ईसाई मुँह खड़ा। महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी। सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेव को आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती।

मार निवाड़ा गुर पौ जले पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लगदियां नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वस दा नेड़ा दखणे महला पंजवा जा मूं आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्रीत हिंजा नाओ महला पंजवा कपड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है व्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर किरपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला पंजवा मूथ आउ सेज नैना पिरी विछावना जे देखै एक वार ता सुख कीमा हूं बाहरे पौड़ी मन लोचै हर मिलन को क्यों दर्शन पाईया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाईया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साईया मैं दस्यो हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाईया मन अर्प्य हो हौ मैं तज हो इत पंत जलाईया नित सेवे हो साहिब अपना सतसंग मलाईया सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाईया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाईया दखणे महला पंजवा मूथिया तख प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावन थी वितरा जान मठाई एक बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणे पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिय भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थिया कार कूड़ा भी छड संभल सच तनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी
बाहर भेख ना पाईए प्रभ अंतर जामी एक सहार जियो बाहरी सब फिरे निकामी मन रता कटंब सियो नित गर्भ फरामी फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चल दिया नाल ना चले खिन जाए बिलामी विचर दे फिर है संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी दखने महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोहे नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो तै तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांड आह पाव तवंदो पीवसा मूह तन प्रेम अथाह पसन कु सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवे जाए पवाई है बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरो थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह वेख तुर कर मचा जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण माले उतरे सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जनम जय कट बुट्ठा सच तनी महला पंजवा लोयन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो माफिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई ओ न हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्ले होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सा सुतड़ी सो सहो डिठ तै सुपने हौ खनिए महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावन थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पौड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेक मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवे जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निरासा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे ओद बाज प्यारे अपने
बिरही नहा तिरुद पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्स समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वर हो सेवक थिर होसी सलोक दखने महला पंजवा सह नंगे लह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाषाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगाधा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखने महला पंजवा जोड़ बंदे आप सोत राए किनखे तारेंदड़ो पी तार नानक पिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथै कोई कथन नाऊ सुनंदो मां पेरे मूं जलाऊ तत् नानक प्री पसंद।

लंबै। कहो कबीर एक बेनती बराजियड़े, मोको भौजल पार उतारवणा हम्बै। राजन कौन तमारे आवै, ऐसो भाव बिदर को देखियो। ओहो गरीब मोहे पावै रहाओ, हस्ती देख भरम ते भूला। श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो। अमृत कर मैं मानिया खीर समान साग मैं पाया। गुण गावत रहन बेहानी कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी। जात ना काहू की मानी श्लोक कबीर। गगन दमामा बाजियो परियो निशान कहाओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचान।

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया। अबाल बाल तोड़िया अचल चल थपिया अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आदि गुण आदि वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव जय देव कौ रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम से

तन जोगन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किस ना बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे,

राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माते शतर तरै रहाओ। जाकी शोत जगत को लागे, तां पर तुही तरै, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन,

सुख सागर सुरतर चिंता मन काम धीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल तां कै हर हर हरना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा, देह सो तू भला, हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन घड़ी ना जीवा, प्रिय बाज दहेली कोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राच रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सा धन, तू सुने आत्म रामा, बाबीहा प्रियो बोले को किल बाणिया, सा धन सब रस चूले अंक समाणिया, हरे अंक समाणी जा प्रभ पाणी, सा सुहागण नारी, नव घर थाप महल कर ऊंचो, निज घर वास मरारी, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निसबासुर रंग रावे, नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा, कोकिल शब्द सुहावे, तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रवतर वन्ने, घड़ी ना बिसरे, क्यों घड़ी बिसारी हों बलिहारी, हों जीवा गुण गाई, ना कोई मेरा हों किस केरा, हर बिन रहन ना जाए, ओट गही हर चरण निवासी, भये पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट धीरग सुख पावे, गुर शब्दी मन तीरा, बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी, साजन मिले सहज सुभाए, हर स्यों प्रीत बणी, हर मंदर आवे जा प्रभ भावे, तन उभी गुण सारी, कर कर कंत रवे सुहागण, हौ क्यों कंत वसारी, उन्नव कन छाए बरस सुपहाए, मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसै अमृत बाणी, कर कृपा कर आवे, चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी, बन फूले मंझ भार, मैं फिर घर बहुड़ै, फिर घर नहीं आवे, तन क्यों सुख पावे, बिरह विरोध तन सीजै, कोकिल अंब सुहावी बोले, क्यों दुख अंक सहीजै, पवर पवंता फूली डाली।

पहल पछाना नानक वै साखी प्रभ पावै सुरत शब्द मन माना माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरै थल तप है सर भार सा तन बिनो करै।

हर जप अठ सठ तीर्थ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अन दिन रहस भया आप गुआया मन मोह चुकाया जा किस फाया कर कृपा कर आऊ बहुते वेस करी पिर बाजू महली लहा ना थाऊ हार डोर रस पाट पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी नानक मेल लई गुर अपने घर वर पाया नारी बेदस महा रुती थिती वार भले घड़ी मूर्त पल साचे आए सहज मिले प्रभ मिले प्यारे कारज सारे करता सब बिद जाने जिन सिंगारी तिसह प्यारी मेल भया रंग माने कर सेज सुहावी जा फिर रावी गुरमुख मस्तक भागो नानक ऐन सरावै प्रीतम हर वार फिर सुहागो। तुखारी महला पहला पहले पहरे नैन सलोनड़िए रैन अंधियारी राम।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइये, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मुख

कंपे नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसे ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

चूकी अब मानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगति जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देस वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाईए फिर पारे सतगुर शब्दी मिलै विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मली

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया हवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंते पाए नित देव चढ़ सवाया अपरंपर आपे थाप उथापे जिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता साच राता साच मिले मन भावे।

गुण गाए राम रसाए रसिय है, गुर ज्ञान अंजन सारे, त्रैलोक दीपक शब्द चानन, पंच दूत संघारे।

सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी संत।

जब लग दर्स ना होए क्यों अमृत पीवी राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु बिटहु कुमाय, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड निस्तारिय राम, हम मूड मुगद किस्मित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर भरमे, हुण तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग हैं सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाई, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास बसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हौ सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देउ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपर परा, जो तुम प्यावे जगदीश, ते जान पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम त्याया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेयो अगम, गुर सतगुर बचन लहया, तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोल है, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरियात, ज्यों तू चलावे प्यारे हों तिवें चलां।

लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई, जो गुर बचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तने ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला। तू अंतर जामी हर आप, ज्यों तू चला वह प्यारे हो तिवें चलना। तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश, सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम, जिनकै तुर लेख माथ। जिनको तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम आराध्या। तिनके पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुर बचनी हर जापया। तन तन ते जन, जिन हर नाम जपया। तिन देखे हो भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश, सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल महियल भरपूर, सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त घणी। जिन जपया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हल्त पल्त जन भये सोहेले, हर राख लिए रखण हार। हर संत संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल थल महियल भरपूर, सब ऊपर साच धनी। तू थान थनंतर हर एक, हर एको एक रविया। वण त्रिण त्रे भवन सब सृष्ट, मुख हर हर नाम चवया। सब चवह हर हर नाम करते, असंख अगणत हर त्यावे। सो धन तन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते पावे। सो सफल दर्शन देहो करते, जिस हर हृदय नाम सद चवया। तू थान तनंतर हर एक, हर एको एक रवया। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है जिसकै मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिक है। हर गुण हृदय टिक है तिस कह, जिस अंतर भौ भावनी होई। बिन भय किनै ना प्रेम पाया, बिन भय पार ना उतरिया कोई। भौ भाव प्रीत नानक किसह लागै, जिस तू अपनी कृपा करह। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है तुखारी महला चौथा, नावण पुरब अपीच। गुर सतगुर दर्श भया, दुर्मत मैल हरी। अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया। अंतर ज्योत परगासी, जन्म मरण दुख खिन मह बिनसे। हर पाया प्रभ अवनासी, हर आप करतै पुरब किया। सतगुरु कुल खेत नावण गया, नावण पुरब अपीच। गुर सतगुर दर्श भया, मार्ग पंथ चले। गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बणी। खिन खिन निमख विखा, हर हर भगत बणी प्रभ केरी। सब लोक वेखण आया, जिन दर्श सतगुर गुरु किया। तिने आप हर मेलाया, तीर्थ उदम सतगुरु किया। सब लोक उदरन अर्था, मार्ग पंथ चले। गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत। गुर सतगुर पूर्व हुआ, खबर भई संसार। आए त्रै लोआ, देखने आए तीन लोक। सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसया गुर सतगुरु पूरा। तिनके किल विख नास गुआया, जोगी दिगंबर सन्यासी। खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ, प्रथम आए कुल खेत। गुर सतगुर पुरब हुआ, दुतिया जमन गए। गुर हर हर जपन किया, जगाती मिले दे भेट। गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे। जिन हर हर नाम त्याया, गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले। तिन जम जगाती नेड़ ना आया, सब गुरु गुरु जगत बोले। गुर कै नाए लै सब छुटक गया,
द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत पया, सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड ना दाम लया, आड दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई, भाई हम करहें क्या किस पास मांग है सब पास।

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुरी उठ गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

त्यो नानक हर गल लावी ऐरी। केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो। इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस। इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत की जय हर।

अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वा।

संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमृत।

तीन दुखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गमन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हरे।

नाम प्रीत लागी मन भीतर मांगन को हरदान रहाउ सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखु मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दामोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक को हर कै रंग रंगहु चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवां हर के दर्शन को मन चाऊ कर कृपा सतसंग मलावहु तुम देवहु अपनो नाऊ रहाउ करो सेवा सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाउ वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाऊ सर्व प्रित पाल है सगल समाल है सगलिया तेरी शाऊ नानक के प्रभ पुरख बधाती कट कट तुझह दिखाऊ केदारा महला पंजवा प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मह चितवों आसा नैनहु तार तुहारी रहाउ ओए दिन पहर मूर्त पल कैसी ओए पल करी के हारी खुले कपट तपत भुज तृष्णा।

साध संग मन लाभहु ब्रह्म भउ मोह कट्यो गुरबचनी अपना दर्श दिखावहु सब की रेन होए मन मेरा अहम बुद्ध तजावहु अपनी भगत देह दयाला वडभागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाउ धन जोबन संपै सुख भोगवै संग न

मद मोहक काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल ससाथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाव। सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ। नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उदर सागर के खात। सरन समराथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ। नानक दीन तूर जन बाछत मिले लिखत तुर माथ। किदारा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिसरत नाहि मन ते हरी अब एह प्रीत महाप्रबल भई। आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चातर मीन रहत ना करी। गुण गोपाल उचार रसना टेव एह परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी। प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध धरी। केदारा महला पंजवा प्रीतम बसत रिद मह खोर परम पीत नवार ठाकुर। गह लिहो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर। संत संग हर चरण बोहित उदर ते लै मोर। गर्भ कुंट मह जिनह धारियो नहीं बिखै बन मह होर। हर सकत सरन समरत नानक

जीवन रूप बसार जीव है, तेह कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे,

आव पूर रहया सर्वत्र में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने ढालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु ना जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

बिन पानी। चलत कत टेडे टेडे टेडे, हस्त चरम बिस्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेडे रहाओ। राम ना जप हो कवन भ्रम भूले, तुम ते काल ना दूरे, अनक जतन कर एहो तन राख हो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु ना होवे, क्या को करे प्राणी, जां तिस भावे सतगुर भेटै, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ मह बसते, फुलवत देह अयाने, कहो कबीर जे राम ना चेतेओ, बूढ़े बहुत सियाने। टेढ़ी पाग टेढ़े चले, लागे बीरे खान, पाओ भगत स्यों काज ना कछु है, मेरो काम दीवान। राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान रहाओ। लालच झूठ बिकार महामद, एहे बिद औद बिहान, कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाओ। गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर न देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो, जन्म अकारथ जाए। राग के दारा बाणी रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल।

पद है अमरेऊ, राम भगत बसेख रहाउ, स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत, लोग बपरा क्या सरा है तीन लोक प्रवेश, अजामल पिंगला लुभत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरह रविदास, राग भैरू महला पहला घर पहला चौपदी,

क्या कहिए किस कही ना जाए, जो किस अहै सब तेरी रजाए रहाओ, जो किस करना सो तेरे पास।

मन समझै है गुण गाई, गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया, ते विरले संसारा, नानक साहिब भरपुर लीना, सात शब्द निस्तारा।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालू प्राणी, हर जप जन्म गयो साच, शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे, मनमुख नाम ना

जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अन को दर कर कबहू ना जानस, एक को दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही। दिन सजंजाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी। रहाओ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर धंधा। काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे। शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने। भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती। राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावे। आप मार अपरा

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरु।

ते जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निपल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाण संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त ना

करे सब कुल उधारन हार, बिन नावै मन मुख जमपुर जाहे, औखे होवै चोटा खाहे, आपे करता देवै सोए, नानक नाम प्राप्त होए। भैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द बीचारे, हर जियो अपनी कृपा धार, गुरमुख नामे लगे प्यार, रहाउ अंतर प्रीत।

भूत मलाय। सो प्रभ साचा सब ही साचा, साचा सब अकारा। नानक सतगुर सोजी पाई, सच नाम निस्तारा। भैरव महला तीजा, कल मह प्रेत जिनी राम ना पछाता। सतयुग परमहंस बीचा।

पग लाइन, गुर शब्दी हर भज सुत समायन, मेरे मन हर भज नाम नारायण, हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख भवजल हर नाम तरायण, रहाउ संगत साध मेल हर गायन, गुरमति ले राम रसायन, गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायन, सब किलविख पाप गए गवायन, तू आपे करता सृष्ट तरायन, जन नानक मेल तेरा दास दसायन, भैरो महला चौथा, बोल हर नाम सफल सा करी, गुर उपदेश सब दुख पर हरी, मेरे मन हर पज नाम नरहरी, कर कृपा मेलोह गुरपुरा, सत संगत संग सिंध भौ तरी, रहाउ जगजीवन त्याए मन हर सिमरी, कोट कटंतर तेरे पाप पर हरी, सत संगत साध धूर मुख परी, इसनान कियो अठ सठ सुरसरी, हम मूर्ख कौ हर कृपा करी, जन नानक तारे उतारन हरी, भैरो महला चौथा, सो कृत करनी सार जप माली, हिरदय फेर चलै तुद नाली, हर हर नाम जपो बनवाली, कर कृपा मेलोह सत संगत, टूट गई माया जम जाली, रहाउ गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़ियै शब्द सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारो नदर निहाली।

राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम भूले नर करत कचरायन जन्म मरण ते रहत नारायण रहाव कर पंजीर खवायो चोर ओह जन्म ना मरे रे साकत ढोर सगल पराध देहे लोरोनी सो मुख जलो।

सोई अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता कर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरू महला पंजवां वर्त ना रहो ना महर मंदाना तिस सेवी जो रखे निधाना एक गुसाई अल्लोह मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाव हज का बह जाओ ना तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण कहो कबीर एहो किया वखाना गुर पीर मिल खुद खसम पछाना भैरू महला पंजवां दस मिर्गी सहजे बंद आनी पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी संत संग ले चढ़ियो शिकार मृग पकरे बिन घोर हथियार रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए अहेरा पायो कर कह गाए मृग पकरे कर आने हाट चुख चुख ले गए बांडे बाट एहो अहेरा कीनो दान नानक कह कर केवल नाम भैरू महला पंजवां जे सौ लोच लोच खावाया साकत हर हर चीत नाया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया नह पीजै अधिक सुकाया खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया त्यों साकत ते को ना ब्रासाया कित ही लागा जित को लाया कहो नानक प्रभ बणत बणाया भैरू महला पंजवां जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिन्ह अपाए तिस को पीर गुरु गोबिंद जी कै काम हलत पलत जाकी सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत।

मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाव रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारी अनहद शब्द बजे दरबारी कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिस की गत होवै पीव

सच्चे पातशाह ने तरिया तर पनाह खुदाई गरीब नवाज दिन रहन ते आए नानक को खुद खसम मेहरवान अल्लाह ना विसरै दिल जी प्राण भैरो महला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर रसना कहो रहाओ कल युग मह एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाई।

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरो महला पंजवां, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा खे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाऊ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो महला पंजवां, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पए सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग पेख सन्यासै पेखियो जात जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अष्टी सिमरताई सब मिल एको एक बखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाइए जेह घट प्रगति आई भैरु महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़ै नेड़ै सब को कह गुरमुख भेद बिरला को लह रहाव निकट न देखै पर ग्रह जाई दर्ब हिरै मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोलै कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

भैरु महला पंजवा जिस तू राख है तिस कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट अपाव चितवा।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे ना राखे दूजा कोए, क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए, पहरों महला पंजवा, तौ कड़िया जे होवे बाहर, तौ कड़िया जे विसरे नरहर, तौ कड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहे आसमाए, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तौ कड़िया जे किस होए तिंगाने, तौ कड़िया जे फूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यो पावे त्यों करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहे आसमाए, राखो पैज नानक सरनाई, भैरू महला पंजवां।

बिरथि सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहाँ को बकता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेख, नाम बिना नर कहीं ना लिख, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हौ त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान,

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

चीत आवै ता सद तनवंता, चीत आवै ता सद निपरंता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चूकी काणे, चीत आवै ता सहज घर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरों महला पंजवां, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अभनासी, कुटुंब हमारा निज घरवासी, हम सुख पाया।

अंते अपूछे, राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने, भैरो महला पंजवां, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया, तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भय दयाला, नानक दास देख भय निहाला, भैरो महला पंजवां, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ, सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई, सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान, सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया, जिन गुर सेविया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै, नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद, भैरो महला पंजवां, नाम लैत मन प्रगट भया, नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम, गुर उपदेसिया तत ज्ञान रहाव, नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना, नाम लैत

मोहे दुहागने आप शिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिटयो दुख हर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ, तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भये परगासा, अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम, जा को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना, कहो नानक जो

की आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हार, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार रहाउ, जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावे थाओ, जुगह जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी मैं माया पे जाप, जी

की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावे।

अणहुंदा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तर जो पूजे पैर आदि पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरू महला पंजवा नाम हमारे वेद अर नाद।

मन तन नानक हर गुण गाओ साधु संग जिस देवै नाऊ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहि निर्मल मना सगल मनोरथ पूर्ण काम भगत अपने को देव हो नाम सफल सेवा गोपाल राई करण करावन हार स्वामी।

थान बैठावो दास अपने को भगती लावो नमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतर सुगयान सगल पयान का पौ नसे जाने अपने कै हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसै संत मंडल में दुर्त सब नसै संत मंडल

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किछ जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरि, साध जना कै संग निस्तरी, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई भैरू महला पंजवां सुख नाही बहुत धन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइए वड भागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हों करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावे निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यो पावे त्यो रखो गुसाई पैरो महला पंजवां गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेटत मन भया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतरह दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवां, गुर सो परसन होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यों लागो हेत, खिन मह बिन स्यों महापरेत, आठ पहर हर हर जप जाप, राख नहार गोविंद गुरे आप, अपने सेवक को सदा प्रित पारे, भगत जना के सास निहारे, मानस की कहो के तक बात, जम ते राख दे कर हाथ,

कर्म कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भजन अवनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जात कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई।

सब किस तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म गुरे अगमे अपार, निर्मल सोभा आचर्य बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी, जल थल महियल रवे आसोए, नानक सब किस प्रभ ते होए, पैरो महला पंजवां, मन तन राता राम रंग चरने, सर्ब मनोरथ पूरन करने, आठ पहर गावत भगवंत।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किश बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

पातार सास सास हर देहो चितार भैरू महला पंजवा आपे सास ते आपे बेद आपे घट घट जान भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ करण कारण पूर्ण समरथ।

पे भोगी जत कत देखो तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोई सागर तरिया नाम कै रंग।

त्रेहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्स बांछे दिन राती होए पनीत धर्म राए जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अवमान। ऐसे संत पीतह वडभागी नानक तिन कै सद कुर्बान। पैरु महला पंजवा पंच मजमी जो पंचन राखे मिथ्या रसना नित उठ पाखे। चक्कर बनाए करे पाखंड चुर चुर पचे जैसे त्रय रंड। हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुक्त ना पाईए। साची दरगह साकत मूठ रहाओ सोई कुचील कुदरत नहीं जाने। लीपे थाए ना सोच हर मानै।

काल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रतपाल प्रभ कृपाल कमन गुन गुनी अनक रंग बहुत रंग सर्ब को तनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तार मुनि अनक नाद अनक बाज निमख निमख अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिटह जस सुनी नानक सेव अपार देव तटह खटह बरत पूजा गमन पवन जातर करन सगल फल पुनी पैरो अष्टपदिया महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर बीचारा अमृत बाणी शब्द पछाणी दुख काटै हो मारा नानक हो मैं।

ना हुई, जिनको नदर पई गुर मेले, प्रभ पाणा सच सोई, पौन पानी बै संतर रोगी, रोगी धरत सपोगी, मात पिता माया देह से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी, रोगी ब्रह्मा विष्णु सुरुद्रा, रोगी सगल संसारा, हर पद चीन पए से मुक्ते, गुर का शब्द विचारा, रोगी सात समुंद स नदियां, खंड पताल से रोग परे, हर के लोक से साच सुहेले, सर्वी थाई नदर करे, रोगी खट दर्शन भेख तारी, नाना हठी अनेका, वेद कतेव करह कह बपरी, नह बूझह एक एका, मिठरा सखाए सो रोग परी जय, कंद मूल सुख नाही, नाम विसार चल है अन मार्ग, अंत काल पछताही, तीर्थ पर मैं रोग ना छूटस, पड़िया बाद विवाद भया, दुबदा रोग सो अधिक वडेरा, माया का मोहताज भया, गुरमुख साचा शब्द सलाह है, मन साचा तिस रोग गया, नानक हर जन अन दिन निर्मल, जिनको कर्म निशान पया, पैरो महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तिन करता एक चलते उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख फूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हम कबहू ना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाती पांदे कह आया, नाम बिना नह पढ़ो अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार, पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए, परवृत ना पढ़ो रही समझाए,

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिन आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई, मेरा

माता नर सिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निधान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर

हउमै तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

वडियाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती ना राई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद पावे सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद

सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा भवजल पार न पावह कभी डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मलाई गुर की वाणी शब्द पछाती।

नानक तिनकै सद बलिहारे राम नाम उर धारी भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए तिस सलाही जिस हर तन रास सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिग जीवन मुआ जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता जिस नाम हृदय इन नौ निध पाई नाम बिना भ्रम आवै जाई जिस नाम हृदय सो वे परवाहा जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा जिस नाम हृदय तिस वड परवारा नाम बिना मनमुख गवारा जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।

तब मैं जाता जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा नाम बिना भ्रम जोनी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा जिस नाम हृदय सो पुरख परवान नाम बिना फिर आवन जान तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल साध संगत मह लखे गुप्त।

अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद।

ते पूजा कोट विस्थारन अवरना दूजा कोट ब्रह्मा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी कर्त ब्रह्मंस कोट परलो उपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया घट अंतर जामी।

तीरथ हर साची बहुर बहुर तिस संग मन राची रहाओ अचिंत हमारे पूजन पाओ अचिंत हमारे लीचे नाओ अचिंत हमारे शब्द उदार अचिंत हमारे परे पंडार अचिंत हमारे कार्य पूरे अचिंत हमारे लथे वसूरे अचिंत हमारे बैरी मीता अचिंतो ही एहो मन वस कीता अचिंत प्रभु हम किया दलासा अचिंत हमारी पूर्ण आसा अचिंत हमा को सगल सिद्धांत अचिंत हम को गुर दीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा अचिंत हमारे अनहत वाजे अचिंत हमारे गोविंद गाजे अचिंत हमारे मन पतियाना निश्चल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बिबेका अचिंत चरी हाथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई भैरों बाणी भगतां की कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरा संपै हेत कलत धन तेरा रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी।

मिसमिल तामस परम कदूरी, भाखले पंचै होए सबूरी, हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे सेख, कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कत है ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो, संत

जो निर्तन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन दो

सो देही पज हर की सेव, पजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो रहाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज लेहे रे मन सारिंग पानी, अब ना भजस भजस कब भाई।

अंतर अन्न गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्र सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किस दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या घट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रियंग माया मह खापे।

राति साकर माखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खेला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

मेरी मिट जाई, तब प्रभ काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही,

हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिव लाए सतर साई सलार है जाकी सवा लाख पैकंबर ताकी सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजलस दूर महल को पावे रहाउ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिरे दीवाना बाबा आदम को किस नदर दिखाई।

सदा पिखारी द्यों जवाब हुए बजगारी दास कबीर तेरी पनाह समाना पिसत नजीक राख रहमाना।

बंका पाई दोवर कोट अर तेवर खाई रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर आडी पर बल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रब राया काम कवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर तह मन मावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई तिशना तीर रहे काट पीतर यों गाड़ लियो ना जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एक है चोट सजाया सत संतोख ले लरने लागा तोरे दुए दरवाजा साध संगत अर गुर की कृपा ते पकरियो गढ़ को राजा भगवत पीर सकत सिमरन की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अबनासी गंगा गुसाइन गहर गंभीर जंजीर बां

अनहद शब्द होत चुनकार जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रय स्थान तीन त्रय खंडा अगम अगोचर रहया अभ्यंत पार न पावे को धरनी तर मंत कदली पोहप धूप परगास रस पंकज महलियो निवास द्वादश दल अब अंतर मंत जह पौड़े श्री कमला कंत अर्ध उर्ध।

कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाच्यो तो केवल राम, आन देव सिंह नाही काम, रहाउ कोट चंद्र में करह चराक, सुरत

पासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहु हिरै, इंद्र कोट जाके सेवा करै, छप्पन कोट जाके

पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना पजंते नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है 32 लखना।

मेरो मन पतियाए, नाहीं ता घर को बाप रसाए, रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी, लैना मैं हर आगै तरी, एक भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हसे, दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पया, मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ता को करो शिंगार, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग, रहाओ बा

हम ही पाचहारी राम कह करताल बुझावे चटिया सब बिगारी राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन तरे रहाव बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी पूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो और ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सहयोध कनेरी गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै को पियो मोहि बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख हर नाखश जिन नखह बिदारे हो सुर नर किए सनाता कह नाम देहो हम नर हर त्यावे राम अप

नातर गर्दन मारो ठाए, बादशाह ऐसी क्यों हुए, बिस्मिल किया न जीवै कोई, मेरा किया कछु न होए, कर है राम हुए है सोए, बादशाह चढ़ो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजै खुदाए, ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गोपाल गंग जमन जोल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रे पवन धनी पाखन तन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह ता धरन अकोडी करो कह ता लेकर ऊपर धरू।

दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की कट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी।

जो कोई पारस परसै दुबदा ना होई रहाओ सो मन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक समाई मन का स्वभाव सब कोई करे करता हुए सो अन पै रहे फल कारण फूली बन राई फल लागा तब फूल बुलाई ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मथे सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अभाग।

पहला घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महा ममारखी चढ़िया सदा बसंत पर फड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोविंद भोलिया हौ मैं सुरत वसार हौ मैं मार विचार मन गुण विच गुण लै सार रहाउ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घणी।

चूका माने अपमान, अखी कुदरत कन्नी बाणी, मुख आखण सच नाम, पत का धन पूरा हुआ, लागा सहज ध्यान, महारुती आवना, वेखो हो कर्म कमाए, नानक हरे ना सूकहे, जे गुरमुख रहे समाए, महला पहला बसंत, रुत आई ले सरस बसंत माए, रंग राते रवह से तेरे चाए, किस पूज चढ़ावो लगो पाए, तेरे दासन दासा कहो राय, जग जीवन जुगत ना मिले काय, रहाओ तेरी मूर्त एका बहुत रूप, किस पूज चढ़ावो देओ धूप, तेरा अंत ना पाया कहां पाए, तेरा दासन

काजी मुल्ला हुवै सेख, जोगी जंगम भगवे पेख। को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ियस बंद। जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर होवग सार। हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत पंडार। बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग। जटा धार क्या कमावै जोग।

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाऊ सिमरत शास्त्र करह बखियान नादी बेदी पढ़ पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कैर मैया नेड़ नाई जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू राख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब

अपरंपरे अगमे अगोचर गुरमुख हर आप तलाए अतुल तोल रहाउ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठ पाइए हर महल ठाऊ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मिलावे करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कहो नानक पावे बिरले के बसंत महला तीजा एक तुका साहिब भावै सेवक सेवा करै जीवत मरै सब कुल उधर है।

खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै हरे मन चेत हरी बिन गुर मुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करह सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरे।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ। कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस भावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों पावे त्यों राखे सोई।

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरु

प्यारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारे जन नानक और हर अमृत तारी बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे ना होए सोग मन मुख मोए नाही हर मन माही मर मर जम्मह पी मर जाए से जन जीवे जिन हर मन माए साच सुमाल है साच सुमाहि रहाउ हर ना सेवह ते हर ते दूर दसंतर भवह सिर पावह धूर हर आपे जन लिए लाए तिस सदा सुख है तिल नात माए नदर करे चूकै अभमान साची दरगाह पावै मान हर जियो वेखै सद हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद संभाल दर साचै पत स्यों घर जाए नानक नाम वडाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखै और ना कोई दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावे सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे

मन आई। बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाई, मन तन हरिया सतगुर पाई, सफलो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुपाई, सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ, आपे नेड़ आपे दूर, गुर कै शब्द वेखै सद हजूर, शाम घणी फूली बन राय, गुरमुख बिबसै सहज सुपाई, अन दिन कीर्तन करह दिन रात, सतगुर गवाई विचों जूठ परांत, परपंच वेख रहया विस्माद, गुरमुख पाईए नाम प्रसाद, आपे करता सब रस भोग, जो किछ करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिन नात माई, नानक मिलिए शब्द कमाई।

नाम रता जन प्रगट हुए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचै पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा हुए, जिन सच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई, पूरे

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर भेटै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहु मलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाउ मन बसंत हरे सब लोए फलह फुलियह राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखै उर तारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरै भाग हर भगत कराए इस मन को बसंत की लगै ना सोए एहो मन जलिया दूजै दोए रहाओ एहो मन धंदै बांधा कार कमाए माया मूठा सदा बिन लाए एहो मन छूटै जां सतगुर भेटै जम काल की फिर आवै ना फेटै एहो मन छूटा गुर लिया छडाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बनराए एह जी जंत फूलह हर चित लाए इन बिद एहो मन हरिया होए हर हर नाम जपै दिन राती गुरमुख हों मैं कड़ै तोए रहाउ सतगुर बाणी शब्द सुनाए एहो जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जां आपे लाए मूल लगै तां सतगुर पाए आप बसंत जगत सब वारी नानक पूरै भाग भगत निराली बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर की बाणी बिटोह वारिया पाई गुर शब्द बिटोह बल जाई गुर सलाही सदा अपना पाई गुर चरणी चित लाई मेरे मन राम नाम चित लाई मन तन तेरा हरिया होवे एक हर नामा फल पाए रहाओ गुर राखे से उबरे पाई हर रस अमृत पियाई विचों हो मैं दुख उठ गया पाई सुख बुठा मन आई तुरे आपे जिन्ना नो बख्शियो न पाई शब्दे लयन मलाई धूड़ तिन्ना की अकुलिया पाई सत संगत मेल मलाई आप कराए करे आप पाई जिन हरिया किया सब कोए नानक मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मलावा होए राग बसंत महला चौथा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत त्यों घट घट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्ब थाए गुर शब्दी मिलिया मेरी माए रहाओ घट घट अंतर एको हर सोए गुर मिलिया एक प्रगट होए एको एक रहिया भरपूर सागत नर लोभी जान है दूर एको एक वरतै हर लोए नानक हर एको करे सो होए बसंत महला चौथा रैन दिनस दोए सदे पए मन हर सिमरहो अंत सदा रख लए हर हर चेत सदा मन मेरे सब आलस दुख भंज प्रभ पाया गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ मनमुख फिर हों मैं मुए काल दैत संघारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर लिव लागे जन्म मरण दो दुख भागे भगत जना को हर कृपा तारी गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदर एक लुकानी सतगुर मिले तां खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी माधो
साधु जन देहो मलाए, देखत दर्श पाप सब नासह, पवित्र परम पद पाए रहाउ। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, धन साबत रास उबरिया। पाखंड भरम उपाव कर थाकी, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया, अज्ञान अंधेर गवाया। जगन्नाथ जगदीश गुसाई, कर कृपा साध मलावे, नानक शांत हुए मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुमनशे, हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनशे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृपसे, जन्म जन्म के किल विक मल भरिया, मिल संगत कर प्रभ हंसे रहाउ। तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे, हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सोभा हर प्रभ दिन से, जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से, से धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे, हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे, जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै, नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता, थन काढ़े बिलल बलीदे। गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे, वड्डै भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीते, ज्यो जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म के हों मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचर हो ठाकुर, तुम पैज रखो हो अपनी दे, हर भावे सुन बिनो बेनती, जन नानक सरन पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, तिल घर नहीं वासा पाईए, गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो, घर मंदर आन वसाईए। गोविंद जीओ सत संगत मेल हर त्याईए, हों मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईए रहाउ। कर रतन लाल बहुमान कलादी, मन भ्रमिया लह ना सकाईए, ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै, त्यो सतगुर वस्त लहाईए। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईए, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईए। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईए, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईए। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान भया दुख बिखिया, देह मनमुख सुनी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेतिया, जम पकरे काल सुनुन्य। गोविंद जीओ बिकहु मैं ममता मुन्य, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुन्य।

पानी हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लाइय हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विट्टो हो कुमवान्य जान के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लाइय जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर भाइय।

देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुण है गाई जन नानक हर हर हर त्याई।

नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उधार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोभा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोज है सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम तोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग हो हे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जिस के धारे तरन आकाश घट घट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लग हो सेव आद पुरख जिसकी आदान तिसको मिलिया हर निधान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवा मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जपियो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना।

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो।

प्रभु आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताए, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप,

पंजवां गुर चरण सरे वत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चेते आवै बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवै जावै रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुर मिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुर मिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोविंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवां किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौले ओ हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे।

कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां

फूल फूल फूले, अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी, तुम मिलो हो प्रभ सुभागी, हर चेत मन मेरे रहाओ, सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले, बसंत रुत आई पर फूल ता रहे, अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो, अन रूत नाही नाही मत परम भूलो, गुर मिले हर पाई जिस मस्तक है लेखा, मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे हर हरे, बसंत महला पंजवा घर दूजा हिंडोल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिवलाई, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाई, इन बिद

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेलै आपे देखै, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेलै, सो जिन बाजी घर आया।

ता पार ब्रह्म प्रभतनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ उपत परलो प्रभते होवे एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूजे नानक तरिये गुर बचनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चाले ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह जेह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

भागी उपजियो निर्मल ज्ञान लोभ मोह एह परसना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बनासी मनते निज सुख माहि समाया जा को होत दयाल कृपा निद सो गोविंद गुण गावे कहो नानक एह बिद की संपै को गुरमुख पावे बसंत महला नौवां मन कहां बसारियो राम नाम तन बिनसै जम स्यों परै काम रहाउ इहो जग तुएं का पहार तै साचा मानिया केहे विचार तन दारा संपत गृह कश संग ना चालै समझ ले एक भगत नारायण होए संग कहो।

संग तेरे हर बसत मीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

गाछुह पुत्री राज कुवार, नाम भणुहु सच दूत सवार, प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तोहे, नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन भूलो भरम से आए जाए, अत लुब्ध लुभानो बिखम माए, नह अस्थर दिसै एक पाए, ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए, मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बिचारे सहज पाए, रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बेकार, मैगल ज्यो फासस काम हार, कड़ बंधन बां

लीन सब दुख सखाई गुण है बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख तू आपे सुरता आप राख तर धारण देखै जाने आप आप भलाए किस कहो जाए गुरमेले बिरथा कहो माए अवगुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले है मत उत्तम होए मन निर्मल हमें कदै धोए सदा मुक्त बांध ना सकै कोई सदा नाम वखाणै और ना कोई मन

कदे नाही। गुर शब्द सुनाए मत अगाए, तू मोटो ठाकर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर हुए, एकत राचे पर हर दुए, दूर दर्द माथे अमृत खाए। गुरमुख बूझे एक समाए, तेरे दर्शन को केती बिल लाए,

तारा दुख घणो मरिए करतारा बिन प्रीतम को करे ना सारा सब उत्तम किसे आखो ही ना हर भगती सच नाम पतीना रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे बिन हर भगती दुख कनेरे दुख सुख दाते।

लावे। मन मह मनुआ चित मह कीता, ऐसे हर के लोग अतीता। हरख सोगते रह नरासा, अमृत चाख हर नाम निवासा। आप पछान रह लिवलागा, जन्म जीत गुरमत दुख भागा। गुर दी या सच अमृत।

बसंत महला पहला दुबदा दुरमत अंदुली कार मनमुख पर मैं मंज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना पागे रहाउ मनमुख अंदले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख चौरासी जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करतार गुर

परम चुकाया बेमोहताज बे अंत अपारा सच पतीजै करण हारा नानक भूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत।

थाप आपे बशरू गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करनहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परमहीर तू आपे करता करन जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

पार पवे नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब ना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करेंगे कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वडियाई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर ना रहाई अनक उपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पाज राम नाम निशान रहाओ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज।

खीली इकरती तिल ना कटाई जन की उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सकै तिल

जन प्रीतम प्यारी जो हो वह दासन दासा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मलावे नानक गुरमुख सहज मलाई ज्यों जल जल है समावे बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मन उदरिया।

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाऊ गन का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप वस्त्र सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कहो गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय देव त्याग्यो अहमेव ना

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप। गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां। अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत। रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज। पाप करम तव नह संगाई विख का माता आवे जाई। हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार। राम क्रोध मन वस किया सुपन नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन

कर कृपा लड़ ले हो लाई, नानक दास प्रभ की शरणाई। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का नाम त्याय कै हो हरिया पहाई, कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई, वन त्रिण त्रे पवन मौलिया, अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई, पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ, दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ, जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ, कितों उपजै कह रहे कह माही समावे, जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे, कहन त्याइन सुन नित से भगत सहावे, अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे, सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे, बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मौली धरती मौलिया आकाश, घट घट मौलिया।

सुख देव अर अकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर, शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम, जोए खसम है जाया, पूत बाप खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ, सुत मकलाई अपनी माओ, रहाओ, पगा बिन हुरिया मारता, बदले बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नर पैसो है, बिन बासन खीर बलोए, बिन अस्थन गहू लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट

मोह को कहां पढ़ाव से आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम। रहाओ संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बलाए बेग ताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सताव हो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड खड़ग को प्यो रिसाए, तुझ राखनहारो मोहे बताए। प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार, हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखै ना पार, प्रहलाद उधारे अनक बार। इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रत्न

दारल दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए। रहाउ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर

जन्म मरण दुख आस तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर। नायक एक बनजारे पांच, बरद पचीसक संग काच। नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं नकाज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज। रहाउ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन। तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार। पूंजी हैरानी बनज टूट, डह दिस टांडो गयो फूट। कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता पी जूठा, जूठे ही फल लागे। आवह जूठे जाहे पी जूठे, जूठे मरह अभागे।

मेरा चेतना चले मन भयो पांग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चुआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे।

सतगुर मैं बलिहारी टोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगत ना छोड़ो पावे लोग हसै, चरण कमल मेरे हियरै बसै रहाओ। जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांडै, तैसे संत जना राम नाम ना छाडै। गंगा गया गोदावरी संसार की कामा, नारायण सो प्रसन्न हुए ता

हों तर भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाडुली रहाउ धोबी धोवे बिरह बराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देव राम रहया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाही पहरावा देखे ऊब जाए गर्भ

खूब राज तू तिसते खरे उतावली रहाउ, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढै परदेस, आप तन काजो करे विचार,

पाछे किसह पकार है पियो पियो। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटह पाप सब कोट कोट। कहर वदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल। इस कर्म है

रखारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबहू बूझ जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर पई।

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुरे आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरे आगे गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बीचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मनमुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रवे आ स्वामी सर्ब कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उबहारी। सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई। रहाउ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाई। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाई। मत प्रगास भये हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाई। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाई। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाउ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी। पुरखै पुरख मिलिया सुख।

हृदय हर हर पानी पंच जना गुर वसगत आनी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम मैं नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिथिया कौ तुम अपनी कर जानो छाड़ छाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै बूझ ना सकै गवार सो किछ करै जे साथ ना चालै।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊ, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को किरपा भई, हर की किरपा भई, जगदीश्वर किरपा भई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को, कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले, जो

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ। हर का नाम अमृत हर हर हरि, सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु, सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि, तिनका सब दुख भरम पहु जासी। जन नानक नाम लए ता जीवै, ज्यों चात्रक जल पिया त्रिपतासी। सार महला चौथा, जप मन श्री राम। राम रमत राम, सत सत राम। बोलो पैया सद राम राम राम, रव रहया सर्वगे रहाउ। राम आपे आप, आपे सब करता। राम आपे आप, आप सबत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय। सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो। जो भगत जना की पात राखै, विच कल युग अगे। जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दुख गए सब भगे। सारंग महला पंजवा, चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर मूर्त कहो बल जाओ। अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की, सफल दर्शन कद पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व कृत पालक, भगत वच्छल हर नाउ। जा तो कोई न राखै प्राणी, तिस तू देहे असराउ।

तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्स मन चाओ। सार महला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक, हिरह पर दर

रह सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान। सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की तू

सतगुर बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पय है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको,

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यों उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लाहा सगल पराद एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यों तस्कर दर्शानेहा।

जो सगले अवगुण मेट धरहा सारग मोहल्ला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै ना लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख टेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक श्रृंगार रे

सब मन तने अर्पो शीस चरण पर राखियो चरण बंदना मोल दासरू देओ साध संगत अरदागियो करहु कृपा मोहे प्रभु मलावहु निमुख दर्श पे खागियो दृष्ट पई तब पीतर आयो मेरा मन अन दिन सीत लागियो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजियो सारंग महला पंजवा माई सत सत सत हर सत सत सत साधा बचन गुरु जो पूरै कहियो मैं शीक गांठरी बांधा रहाओ निसबासर नखियतर बनासी राव ससियर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा हंड बनासी जेर बनासी उत्पुज सेत बनाधा चार बनासी खटह बनासी एक साध बचन निहचलादा राज बनासी ताम बनासी सातक पी बेनादा दृष्ट मान है सगल बनासी एक साध बचन आघादा आपे आप आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो ना जाई कहीं पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा सार महला पंजवा मेरा मन बास गो गुर गोबिंद जहां सिमरन भयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाऊ जहां बीसरे ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद जहां कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिरथानंद एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रभु पावो दीजै साध संगत किरपानंद नानक पूर रहयो है सर्व में सगल गुणा बिद जानंद सार महला पंजवा अब मोहे राम पुरु सौ पाए जो जो सरन परयो करना निद ते भवह तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाए देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल अमोल नाम हर छोड़।

काजर मह परया बहुर बहुर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुशकार गिरियो जाए रसातल परियो सिति सिति सिर पारे निर्वैर संग वैर रचाए पहुँच ना सके गुवारे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत चरम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत।

तरसद खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई।

यत्न करो एहो मन नहीं धीर को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक।

हरे। यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की, था हरने की ध्यान को। वाणी मंत्र महापुरखन की, मन है उतारन मान को। खोज लहियो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को। सार महला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए। रोग सोग तेरे मिट है सगल अग, निमख ही है हर नाम त्याए। रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई, साधु सरनी जाए पाए। जो होए कृपाल दीन दुख भंजन, जमते होए धर्म राय। एक सबिन नाही को दूजा, आरना बियो लवे लाए। मात पिता पाई नानक को, सुख दाता हर प्राण साए। सार महला पंजवा, हर जन सगल उधारी संग के। पये पनीत पवित्र मन, जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ। मार्ग चले तिन्नी सुख पाया, जिन स्यों गोष्ट से तरे। बूढ़त कोर अंध कूप में, ते साधु संग पार परे। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जोरे। तिनकी धूर बांछे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे। सार महला पंजवा, हर जन राम राम राम त्याए। एक पलक सुख साध समागम।

पतत के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ता का जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चौहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राखियो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परयो तौ गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जह ते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाऊ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यो दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुग्र सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा बिसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुरबस कर दीना भोगो भोग नसंगा निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन कौ कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जे घर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानथ पए लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभु कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यो जल मीना रहाओ राम क्रोध लोभ मद मत सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पए अचिंत त्रिशन सब बुझी है इहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोज

दुख सहामा गोबिंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारंग महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रय बोला गुरबाह पकर प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाऊ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलकर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहंग रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थ होहं सारंग महला पंजवा नैन हूं देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट वाल।

द्वार बना है भक्त वशल गुण तासा अंध कूप में दीपक बलेओ गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवां चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बसेओ मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुर पूरा भेट्यो सुख सहजे अनद बिहावा सारंग महला पंजवां त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तुही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज में पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवां गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरै करी न बिसरै सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

परगासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजो नी संभव सर्व थान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग न लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियरै बसेओ

दास बराते नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

पूल पूल बेख खाई रहाउ। प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई। मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई। सगल निदान करै मह पाई, कहो नानक जोत समाई। सारंग महला पंजवा, वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया। जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाउ। हम भूले हैं तुम सदा अपूला, हम पतत तुम पतत उधरिया। हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो केते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा आनंदाई व्रत पाले बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकी बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइए आस न अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याइए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरनी पाइए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाइए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाइए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताई है सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे अमृत नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैरे कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दा तेरे काट सिल्क जो अपना कीनो नानक सुख कनेरे सारी महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख बनासी पयो कृपाल जी सुखदाता होई सगल खलासी रहाओ अवर न को सूजै प्रभ बिन कहो को किस पह जासी ज्यो जान हो त्यो राखो ठाकुर सब किस तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अपनासी कहो नानक मन आनंद भया है काटी जम की फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझ सुमारे हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यो जान है त्यो पारे रहाओ जब भूखो तब भोजन मांगे अगाए सुख सघारे तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थापियो थापन हारे नाम न बिसरे तब जीवन पाइए बिनती नानक एह सारे सारंग महला पंजवा मन ते पै पौ दूर परायो लाल ब्याल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाव गुर बचनात कमात कृपाते बहुर न कतहू तायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वच्छल ग्रह पायो नाद बनोद कोड आनंदा सहजे सहज सुमायो करना आप करावन आपे कहो नानक आप आपायो सार महला पंजवा अमृत नाम मनह आधारू जिन दिया तिस कह कुर्बान गुरपूरे नमस्कारु रहाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारू आए ना जाए बसै एह ठाहर जह आसन रंकारु एक प्रगट एक गुप्ता एक तुंडू कारु आदमा बेअंत प्रभ सोई कहो नानक साच बीचारू सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रहन ना जाए करी सर्ब सुख ताहू कै पूरन जा कै सुख है हरी रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना
वड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कमन पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारी कहो नानक ते पवन पवित्रा जा मह संत तुम्हारी सारंग महला पंजवा रसना जपती तू ही तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू ही।

पुरखा किन्हीं बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी। सारंग महला पंजवा, झूठो माया को मदमान, त्रोहो मोह दूर कर बपरे, संग गोपाल लह जान रहाव, मिथ्या राज जोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान, मिथ्या कापर सुगंध चतुराई, मिथ्या भोजन पान, दीन बंदरो दास दासरो, संत है की सारान, मांगन मांगो हुए अचिंता, मिल नानक के हर प्राण। सारंग महला पंजवां।

के हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाटली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस जह

सेवक की आपकी ओ बंधान आद जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाईए वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा करहो गत दयाल संतो मोरी तुम समरत कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारे समत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराद हो छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियान तुमरी देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभु पानी। सारी महला पंजवा तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारी। सच तन बनजो हो सच तन संचो हो कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही अगंत भरे भंडारी। कहो नानक सोभा संग जाव हो पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मून ते मनुख करिया एहो परता।

काम को बल होए सगल मनोरथ पूर्णता होके दुख ना व्यापे कोई रहाओ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारू महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवां आतुर नाम बिन संसार त्रिपत ना होवत कुकरी आसा इत लागो बिठिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर ओहो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरा वार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृथ दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर ना पये बिखाद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महा बज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर गइया खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा।

उसका कहया कोई ना सुनी, कहीं ना बैसन पावे। इहा दुख आगे नरक पुंचे, बहु जोनी परमावे। प्रगट भया खंडी ब्रह्मनी, कीता अपना पाया। नानक शरण निरपहु करते की, आनंद मंगल गुण गाया। सारंग महला पंजवा, कृष्णा चलत बहु प्रकार। पूर्ण होत न कत हो बात है, अंत प्रतिहार रहाउ। सांत सुख न सहज उपजे, यह इस व्यवहार। आप पर का कश

कर मस्तक धार्यो मेरे माथे साध संग गुण गाए तुमरी कृपा ते सब फल पाए रसक राम नाम त्याए अब चलनी मतराई सतगुर कबहू डोलत नाही गुर नानक जब भये दयारा सर्व सुखा निद पाही सारंग महला पंजवा निभे नाम की सच खेप लाभ हर गुण गाए निद तन बिखे माहे अलेप रहाव जी जंत सगल संतोखे अपना प्रभ त्याए रत्न जन्म अपार जीत्यो।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बिकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारण महला पंजवा कर छेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिय हर संग संग खचिय जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारिन महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे वर्त संध सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्स नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारिन महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवां हर हरे हर मुख बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहीं त्रास सिमर अंतर जामी।

पंजवा करत केल बिखै मेल चंदर सूर मोहे उपजता बेकार दुंदर नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाओ करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सकत रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

जस जाचो मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ हर की प्यास प्यासी कामन देखो रहन सुबाई श्री तारनाथ मेरा मन लीना प्रभ जाने पीर पराई गणत शरीर पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहा समाई ऐसी रबत रवो मन मेरे हर चरणी चित लाई विषम भये गुण गाए मनोहर निरपौ सहज समाई हृदय नाम सदा तुन निश्चल घटै न कीमत पाई बिन नावै सब कोई निरतन सतगुर बूझ बुझाई प्रीतम प्राण भये सुन सजनी दूत मोए बिख खाई जब की उपजी तब की तैसी रंगुल पई मन पहाई सहज समाध सदा निवहर सियो जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रत्ता बैरागी

यद कहाई एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथो कथिय कहो कहावे सोई नानक दीन दया।

द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच आधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए हैं

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संतोह कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोई ना किसी ही संगे। काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझह उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलक काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारंग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान तरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर। अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात। अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख बेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल। अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान। अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान। अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर। अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते। अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड। अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल। अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात। अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए। अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय। अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत। सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग। अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल। सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता। कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया। अब रस माने भोग कटाने आनना दिया कोथिया। हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नानक दर्श लीना ज्यों जल मीना सब देखिए अनपह का दाता।
कौन उपमा देवो कमल बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों ना अराध हो मिल कर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्भ सब जो किस दिसै, संग ना कछु हूं जाई, कहो नानक हर हर अराध हो।

ऐसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पह आया सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै अवरना कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए तूड़ लेखा लिखिया मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरे पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाब वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

देखे तंदे लाई, किसे थोड़ा किसे अगला, खाली कोई नाही। आवह नंगी जाही नंगी, विचे करह बथार, नानक हुक्म ना जानिए अग्गे काई कार। महला पहला, जिन सथाप जिया को भिजे, जिन सथाप ले जावे।

दावी मूल मत परवाना एहो नानक आख सुनाई करनी उपर हुए तपावस जे को कह कहाए पौड़ी गुरमुख चलत रचाय उन गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया सलोक महला दूजा सा चले बन जा रिया लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइयै वस्त सुमाल वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले इक चले मूल गवाए थोड़ा किने ना मंगियो किस कही है साबास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केतियां के बाप केतियां के बेटे केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाति क्या हुण हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मन मुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जम दर बद्दे मारी है परम है परमाया मन मुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाईऐ गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग सिउ जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाहिऐ करे सोए सलाहे नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाहिऐ जिन कीता आकार दाता सो सलाहिऐ जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत सियो कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस हुए सतगुरु त्याई नानक आप दयाल हुए नामे लिवलाई सलोक महला दूजा किस सिओ कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो परवान चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार जो तिस भावे नानका साई भली कार जिन्ना चीरी चलना

आए कल्ले आवह नानका सदे उठी जाए। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले पंडार।

धरती पानी पर्वत भार क्यों कंडे तोले सुनियार तोला मासा रतक पाए नानक पुछिया दे सजाए मूर्ख अंधिया अंधी तात कह कह कहन कहाएं आप महला पहला आखण औखा सुनन औखा आख न जापी आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापै रूप न जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखण औखा नानका आख न जापै आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशा ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वड़ियाई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

मूर्ख की गिरही का सतदान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धूपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति नाउ पाईए नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारिए ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कढ़िए पशु भरिया जाए अगे लेख मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सब

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीवान पौड़ी नाए मने है सुख उपजे नामे गत होई नाए मने है पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने है पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने है पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले है नाओ मनी है जिन दे वै सोई। श्लोक महला पहला। पुरिया खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिकै किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

सब कारण करता करे देखै वारो वार जे चुपै जे मंगै दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजै नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चरै नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटिए फिर दुख न होई नाए मन्ने सालाहिए पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाउ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता ऊ कारणता अजानता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईए पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाईए हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज होआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म बीचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया करे अपने पाते उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंथा झोड़ी बहु भेख करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचरै माया मोह पसारी अंतर लालच भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुवै बाजी हारी सलोक महला पहला लख स्यों प्रीत होवै लख जीवन क्या खुशियां क्या चाऊ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोवै रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चखै तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग तर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करके कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावै सोए जिसनो प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगति आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन बीचार दे दे लैना लै लै देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो हउमै तुटै तां को लिखिया लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीयो
जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जीओ ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सच्चा नाऊ सच बीजै सच उगवै दरगाह पाईऐ थाऊ वेद वपारी ज्ञान रास करमी पल्लै होए नानक रासी बाहरा लद न चलिया कोई पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र वसाई है बहु दूध

पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरध ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ है ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया जो हर नाम त्याएंदे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम समाया सलोक महला चौथा सतगुर सेवन से वड भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हठ आवे जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई, घर मंदिर गच गीरिया किस साथ न जाई, सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजै पाए नाओ कदे ना पाइन, दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है, माया कै व्योहारी, अंदर कपट उदर भरन कै ताई, पाठ पढ़ गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन्हों मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है, बूझै को बीचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्म आई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरे झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर पुचरै खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यों सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदियां हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, ओए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से ती रंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हम मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै पावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिखमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करहे सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दरवाज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावे पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारिया
आवन जाना दुए पौड़ी, मंगत जन जाचै दान हर देहु सुपाए। हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखा लिया रल रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा, मन मुख बोल ना जाननी, उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वर्त आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजै पाए नाम वसारिया मन मूरख मिलै सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो न कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याएंदे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवंदे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चलै सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ऊना परख न आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख न आवई ता पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए ता वत लहै नौ नित पल्ले पाए। धर हुंडै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोह माया। देश परदेश धन चराए आण मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख है अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लय आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै ना बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याय, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीहू गुट्ठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे थाए। हर तसै त्याव संत जन हो, जो अंते लय छाए, हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या, तिन्ना दुख भुख लह जाए, जन नानक तृप्तै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी, गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे, मन लय रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब

फेरी। नानक आप कराए करता, जोत पावे साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवां, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार। गुरपुर मेलाया प्रभ देवन हार, भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार। साधु संगत लग्या तरिया संसार, नानक सिफत सलाह कर।

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे, जेहबा स्वादी लीलत लोह, ऐसे कनक कामनी बांध्यो मोह। ज्यों मद माखी संचय अपार, मद लीनो मुख दीनी शार, गऊ बाश को संचय खीर, गला बांध दोहे ले अहीर। माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, अत संचय समझे नहीं मूड, तन धरती तन होए गयो धूड़। काम क्रोध तृष्णा अत जरे,

निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रय मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छिडावे।

निफल भई सब सेवा बाट पार घर मूस बिरानो पेट भरे अपराधी जेहे परलोक जाए अपकीरत सोई अविद्या साधी हिंसा तो मन ते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मेल कथा पनीत ना चाली छाड़ मन हर बेमुखन को संग सारंग महला पंजवां सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेक भय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत

साध हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब मन का रहाउ आगे कौ किस तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतना कलागे ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांचो हो सब जन का कह कबीर।

देही नानक रुत सहावी साई बिन नामै रुत केही मलार मोहल्ला पहला करो बिनो गुरे अपने प्रीतम हर वर आन मलावै सुन कन कोर शीतल मन मोरा लाल रत्ती गुण गावै बरस कना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही अरै गुरमोही मन हर रस लीना रहाउ सहज सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार पई सोहागन मन तन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग पई बैरागन अस्थिर वर सोहाग हरी सोग वजोग तिस कदे ना व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान नहीं मन निहचल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख धन सुहागण सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृपते हम मैं करत गुआया पर धन पर नारी रत निंदा दिख खाई दुख पाया शब्द चीन भय कपट ना छूटे मन मुख माया माया अजगर भार लदे अत भारी मर जन्मे जन्म गवाया मन भावै शब्द सुहाया ब्रह्म ब्रह्म जोन भेख बहु कीने गुर राखे सच पाया रहाउ तीरथ तेज निवार ना नाते हर का नाम ना पाया रतन पदार्थ पर हर त्यागया जात को तत ही आया बिस्टा कीट पये उतही ते उतही माहे समाया अधिक स्वाद रोग अधिकाई बिन गुर सहज ना पाया सेवा सुरत रहस गुण गावा गुरमुख ज्ञान बीचारा खोजी उपजै बादी बिनसै हौ बल बल गुर करतारा हम नीच होते हीन मत झूठे तू शब्द सवार

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलिया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तो धन साच शिंगारू अकुल निरंजन स्यो सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पाई।

पार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाव दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनो नदर करे करतार काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाईए हर मेले मेलन हार मलार महला पहला कर दूजा

तन उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट महसास सास गए काया ढल पाए ताके पाछे कोई ना खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सात्य नाय मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना सीजै दे अंत

सब शाम रात परम दै दिसह थाम देहे ना नाउ ना हुए जात उतै देहो ऐथै सब रात साध कर समदा तृष्णा घ्यो तेल काम क्रोध अग्नि स्यों मेल होम।

ते त्रिपतास्ते सत्य नाम समवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाहि सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाही लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों हो आप गवाया।

सच सोई नानक नाम प्रभु ते पाईऐ जिनको धुर लिखिया होई मलार महला तीजा गण गंधर्व नामे सब उदरहि गुर का शब्द विचार हम मैं मार सद मन वसाया हर राखिया उर धार जिसह बुझाए सोई बूझै जिसनो आपे लए मलाए अन दिन बाणी शब्दे गावै साच रहै निवलाए मन मेरे खिन खिन नाम संभाल गुर की दात शब्द सुख अंतर सदा निभ तेरे नाल रहाओ मनमुख पाखंड कदे ना चूकै दूजे पाए दुख पाए नाम विसार बिख्या मन राती बिरथा जन्म गुआई एह वेला फिर हाथ न आवे अन दिन सदा पछताई मर मर जन्मे कदे ना बूझे विष्टा माही समाई गुरमुख नाम रते से उदरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम ते आया हर

अंतरवसिया अलख्य पीवा गुरमुख होए न खाई। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवें चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इह मन खिलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वासे आवै। इस मन की बिद मन हू जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे समाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता। गुर कै शब्द हर त्याई रहाउ मन तन भीजै एक लिव लागै सहजे रहे समाई। गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै।

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जा को कृपा होए फन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुखदा खोया कौडी बदलै जाए रहाव कर कृपा गुरमुख लगै प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउमै ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपियै सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

जिन ए प्रीत लाई सो जानै, कह जानै जिस मन धरै, जन नानक हर देख सुख पावै, सब तन की भूख तरै। मलार महला चौथा, जितने जी जंत प्रव कीने, तितने सिर कार लखावै, हर जन को हर दीन वडाई, हर जन हर कारै लावै, सतगुर हर हर नाम जरडावै, हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौजल जगत तरावै रहाऊ, जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावै, हर की सेवा सतगुर पूजो हो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अज्ञानी अंधले, भ्रम भ्रम फूल तरावै, निर्जियो पूज है मड़ा सरेव है, सब बिरथी काल गवावै, ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कही है, हर हर कथा सुनावै, तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर, बहु विध सतकर मुख संचो हो, तिस पुन की फिर टोट न आवै, सतगुर देव प्रतख हर मूरत, जो अमृत बचन सुनावै, नानक भाग भले

बसियो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हो तिन कै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाउ हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया।

अगमर गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलो करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम त्यावे है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे श्रेष्ठ सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभु कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया।

तीर आधार बारिक जब होता बिन कीरे रहन ना जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब ओह तृप्त अघाई हम बारिक पिता प्रभ दाता भूलह बारिक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहा चंचल मत बारिक बपुरे की सर्प अग्न कर मेले मात पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारिक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरे मन बांचे सो लैसी पिता कृपाल आ गया एह कीनी बारिक मुख मान

सुरपत कर दोख जठर कौ भरते कृपा निद छोड़ आन को पूज है आत्म घाती हरते हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी तेक न काहू धरते रहाऊ त्याग स्वामी आन को चितवत मूड़ मुग्द खल खरते कागर नाव लंग है कत सागर बिरथा कथत हम तरते शिव ब्रंच असुर सुर जेते काल अगन मह जरते नानक सरन चरण कमलन की तुम ना डार हो प्रभ करते।

त्यागी। हम एक खेन तिस बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मोहे प्रभ चित आवे, संत प्रसाद मोहे जागी।

प्रिय संग राती ए हम मैं की तिथाई पई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मन सधारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ हम तेरी धर स्वामिया मेरे तू क्यों मनो बसारे।

कहो नानक मेरो बनियो सुहागो पत सोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया।

प्यारी प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मलार महला पंजवां अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौत भयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठन भय सागर

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु तहाया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवां बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास तुम

सब रहियो सब अंतर सर्ब रहिया पर पूरे मलार महला पंजवां हर कै भजन कौन कौन न तारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाउ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर उतरी पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारी काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारी दीन दयाल जप

अंतर्जामी सब मह वर्तै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम न पाई। मलार महला पंजवा गुर के चरण हृदय वसाई। कर कृपा प्रभ आप मलाई, अपने सेवक को ले प्रभ लाई। ताकी कीमत कही ना जाई, कर कृपा पूर्ण सुख दाती।

तै आप सदा सदा मन तिसनु जाप दृष्ट धार राखे सब जंत गुण गाव हो नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जान है प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवां गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाई साध संग सद हर गुण गाय मन मेरे गुर पूरा सलाही नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाई रहाउ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए।

सगल श्रृंगार तजियोरी सगल विकार ताव तो अस्थर थिया रहाओ ऐसे रे मन पाए कै आप गुआए कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग कैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया बलार महला पंजवा मन कने

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन

धर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिन सत बार न लागे बवरे, हम मैं गर्भ खपे जाग ऐसा रहाऊ। जय जगदीश।

मन तापै कापर अंग ना सोहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझै बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकियै साचै तान। नाम संभालस रूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण। पूडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मगना चालनहार। जित कर वसै तू है बिद जान, है बीजो महल ना जापै। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापै। करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापै। पल पंकज मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापै। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै पै नाम आधार। साची बाणी मीठी अमृत धार।

चार महला तीजा अष्टपदियां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्म हुए ता सतगुर पाईए बिन कर्म पाया ना जाए सतगुर मिले कंचन होइए।

अचार कर विवेक बुद्ध पाई पुरख है पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चल मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई है करमी पल्ले पाई सतगुर विण किन ना पाया मन वेखो हृदय विचार वड भागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर मेटना ना जाय नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए मलार महला तीजा वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे बीचार बिन नावे जम डांड सह मर जन्मै वारु वार सतगुर भेटे मुख।

हर हर नाम त्याई रहाउ। हरे अपने भाणै सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने भाणै मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार। हर कै भाणै सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई,

मन मुख भरम भुलाया, बिन भागा हर धन न पाई। त्रै गुण सभा धात है, पढ़ पढ़ करह विचार। मुक्त कदे ना हो गई, न पाए न मोख द्वार। बिन सतगुर बंधन ना टूटे ही, नाम ना लगे प्यार। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, वेदा का अभ्यास। हर नाम चेतना आवे, नह निज कर होवे वास। जम काल सिरों ना उतरे, अंतर कपट विनाश। हर नावे नु सब को प्रताप दा, विण भागा पाया ना जाए। नजर करे गुर भेटिए, हर नाम वसै मन आई। नानक नामे ही पत उपजै, हर स्यों रहा समाई। मलार मोहल्ला तीज

कमल परगास तित काट नामे नाम निवास हौ मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजे ना सुख होए कह कह कहन आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाई से भगत सतगुर मन पाई अन दिन नाम रहे लिवलाय सद ही नाम वेख है हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाई शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाई जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला। वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाह भोला वैद ना जानई करक कले जे माही। महला दूजा। वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछाण ऐसा दारू लोड लहो जित मन्य रोगा कान जित दारू।

राम राजा आया, दैंता मारे ताई हुक्म सबाया, ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करी पौड़ी सोहर सदा सरेवी है जिस करत न लागै वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार।

अमित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा, कलमल होई।

शह बरलाय अन तन उपजै बहु घणा कीमत कहण ना जाय। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देनदार जित संबाहे। जित खादै सुख उपजै फिर दुख ना लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाय। दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिलया जाय। आपे जोड़ विछोड़ै।

जो हर चरनी रहे लिव लाय। ज्यो जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाय। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समवाय। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो वई।

वरसै कृपा धार, नानक गुरमुख नजरी आया, हरि आत्म राम मरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिय, बिन तोले पाया ना जाय, गुर कै शब्द विचारिय, गुण मह रह समाय। अपना आप आप तोलसी, आपे मिले मलाई, तिसकी कीमत ना पवै, कहना किशु ना जाय। हौं बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाय। जगत मुस्से अमृत लुटिय, मनमुख बूझ ना पाई, बिन नावे नाल ना चलसी, जासी जन्म गवाय। गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया, दूतां का किसना वसाए। सलोक महला तीजा, बबीहा ना बिललाए, ना तरसाए एहो मन, खसम का हुक्म मन। नानक हुक्म मन्या ते खोतरै, चढ़ै चवगल वन महला।

गणत गणी मनमुख मोहे गवार जो भुला मंझ वणी कटे पाप असंख नावे एक कणी। सलोक महला तीजा बबीहा खसमे का महल ना जानही महल देख अरदास पाई अपने पाणे बहुता बोले बोलिया थाई ना पाई।

जल पाई विचों आप गवाई नानक जिस बिन चसा ना जीव दी सो सतगुर दिया मलाई पौड़ी खंड पताले असंख मैं गणत ना हुई तू करता गोविंद।

या गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

त्रै गुण सर्ब जंजाल है, नाम ना धरे प्यार। गुण छोड़े औगण कमाम दे, दरगाह होए खुआर। जुए जन्म तिन्नी हारिया, कित आए संसार। सच्चा शब्द मन मारिया, अहनस नाम प्यार। जिन्नी पुरखी उर तारिया, सच्चा अलख अपार। तू गुणदाता निदान है, असी अवगण यार। जिस बख्शे सो पाए सी, गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवां, रात ना विहावी सा।

सच्चा दर सोहन पौड़ी, सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलोआ आई जे सतगुर अगे घालिया, ओहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया, गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया, मन

पुरकै सहज सुपाय मेघ वर्षा दया कर गुड़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई।

तीरथ नहाया, हथी सिर खोहाए ना पद कराया, कुचल रह दिन रात शब्द ना पाया, तिन जात ना पात ना कर

मनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोए से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याई पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाए नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाही फसल आहारी।

भूख सनावे, खसमै मूल ना पावे, अक स्यो प्रीत करे अक तिद्दा, अक डाली बह खाई, खसमै पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाई खुदाई, नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

आवे तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगम अगोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमती विचार इक नानो पुद एवं भावदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाई है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे एक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कटै दिन काल सिज्जै काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछै रोवह लिया वह फेर बिन बूझे

सच पछाणिए लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए भौजल तारन हार शब्द पछाणिए चोर जार जुआर पीड़े कहानिए निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानिए।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया।

पलंग पौकै कोप खुआर हुए फक्कड़ पिटे अंध चुपै चंगा नानका विण नावै मोहे गंध महला पहला।

प्राण पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया।

वैस नक पकड़ है राती मानस खाने हर कर लोका नो दिखलाव है ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे स्यों क्या कही है कह ना कह आ बूझे अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही स्त्री पुरख है जान इस मेला उथे मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मास होए जी ए लया वसेरा अपाख पख पाख तज छोड़ है अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे ज्ञान ध्यान कस सूझे नाही चतर कहावे पांडे मास पराणी मास कतेबी चहो जुग मास कमाना जज काज व्याह सहावे उथे मास समाना स्त्री पुरख निप

खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दातार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर छावाणिया आपे बख्शमल।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

हे गोपाल राय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्रशाला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले

जाचै भस्मती सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नाख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंतर।

चौथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन अंत भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगन आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या भरम भरम बहु भ्रमिया लुबदो पुत्र कलतर मोह प्रीत जैसे तरवर की तुष छाया तो

ना उतरै कब हूँ। हर हर जाय मिने हर प्रीत, हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत, हर हर नाम दियो मुख औखद जन।

फिर परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए दे हाथ रहाओ स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

अध्याय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख लेहो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नरेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहा जित ग्रह मंदर हर होत जास।

पग चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे ललाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइय हर ब्रह्म जोग हर पाइय सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहिया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगमे अगादो मत गुरमत हर प्रबलादो तुर हो लिखे ललादो रहाओ दिख माया संच बहु चितै बेकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भये कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहु तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति

आप तरह फूल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधार है गोट पराधी खिन महतार है जा को चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवां अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

पंजवा तीर्थ प्रभु की गाओ मेरी रसना अनक बार कर बंदन संतन ऊहां चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान पर बोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार

कैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भये ठाकुर स्यों।

तेरो जन हर जस सुनत उमायो रहाव मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाद समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहु तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाव ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै धरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

सुनवाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाय शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरन कोट जन्म दुख जाय पुन दान अनेक क्रिया साधु संग समाय ताप संताप मिटे नानक बहुड़ काल ना खाय। कानड़ा महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कथिय संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइय मान रहाउ आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पनीत होहे खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुनै हर कीर्तन तां की दुर्मत नास सगल मनोरथ पावै नानक पूर्ण होवै आस। कानड़ा महला पंजवा साध संगत निद हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ संतरेन नित मजन करे जन्म जन्म के किल बिखरे संत जना की ऊची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मान तन धन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाओ ईत ऊत कहां लुभाव है एक स्यो मन लाए महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद त्याय सगल त्याग सरण आयो

मन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक हर रंग।

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा ताने ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी पोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान तरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त कोर अंध ते काड हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

एउ गहे रहे अटकाए अनक भांत की एकै जाली ताकि गंठ नहीं छोराए फिरत फिरत नानक दास आयो।

बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोई ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नव निध नाम निधान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैनो देख साध दरसेरा।

टोलेरै, दर्शन प्यास बहुत मन मेरै, मिल नानक देव जगत गुर केरै, कानला महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाउ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरसना।

पीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अतरहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना भंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चोर।

करो, ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीत करह तुहारी,

0: मना हर जाप
1: जो संत वेद कहत पंथ गाखरु मोह मगन अहंताप रहाउ
0: जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप
1: नाम जपत सो जन उदरह जिसह उदार हो आप
0: बिन सजाए मोह पै परमा
1: नानक संत प्रताप
0: कानड़ा महला पंजवां कर दसवां
1: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद
0: ऐसो दान देहो जी संतो
1: जाप जियो बलिहार
0: मान मोही पंच दोही
1: उर्ज निकट बसेओ
0: ताकि शरण साधुआ
1: दूत संग निवार
0: रहाओ
1: कोट जन्म जोन भ्रम्यो
0: हार परयो द्वार
1: कृपा गोविंद भई
0: मिलियो नाम आधार
1: दुर्लभ जन्म सफल नानक
0: पाव उतार पार
1: कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा
0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: सहज सुभाए अपने आए
0: कछु न जानो कछु दिखाए
1: प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ
0: संजोग मिलाए साध संगाए
1: कतहु न जाए करह बसाए
0: गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै
1: चरण लुभाए आनत जाए
0: थान थनाए सर्ब समाए
1: रसक रसक नानक गुण बोलै
0: कानड़ा महला पंजवा
1: गोविंद ठाकुर मिलन दुराई
0: परमत रूप अगम अगोचर
1: रहियो सर्ब समाई रहाउ
0: कहन भवन नाही पायो पायो
1: अनक उकत चतराई
0: जतन जतन अनक उपावरे
1: तौ मिलियो जो कृपाई
0: प्रभु दयार कृपार कृपा निद
1: जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद सासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

माया पटल पटल है पारी कर घूमन घेर कला वैगो पाप बकार मनूर सब भारी दिख दुत्तर तरयो ना जावैगो पौ बैराग भया है बोहित गुर खेवट शब्द तरावैगो राम नाम हर पेटी है हर राम नाम समावैगो अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यों ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हमै मन लागी मिल संगत मन लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करे अभिमानी खड पानी चीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगतां की हरनाक्ष ज्यों पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत भई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यों सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूझै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावै।

दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया।

जय तालकुंडे गुरियंकस शब्द दरड़ावैगु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर लिव लावैगु सतगुर शब्द दे हृदय अंतर मुख अमृत नाम चुवावैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवे बिख चार चार लिव लावैगु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावैगु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावैगु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावैगु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावैगु सुपनंतर संसार सब बाजी।

सतगुर सरण त्यावै गु लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को होए आवै गु रहाउ। सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गु ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा गुर सेवक पैजर खावै गु। सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गु ज्यों अमरीक अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन त्यावै गु। सतगुर सरन सरन मन पाई सुधा सुधा कर त्यावै गु दयाल दीन भए है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गु। सतगुर सरन पए से थापे तिन राखन को प्रभ आवै गु जे को सर समदै जन ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावै गु। हर हर हर हर हर सर सेवह तिन दरगाह मान दवावै गु। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावह हर गल मेल मेल मलावै गु। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचै नाम त्यावै गु। हर हर रूप हर रूपो होवै हर जन को पूज करावै गु। साकत नर सतगुर नहीं पिया ते बेमुख हर परमावै गु। लोभ लहर सुवान की संगत बिख माया करंग लगावै गु। राम नाम सब जग का तारक लग संगत नाम त्यावै गु। नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख।

आई, जतन माया के काम न आई, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सत संग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह, जन्म मरना भागे, सत संग पाईऐ हर त्याईऐ, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन धूर बांच है, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपालै, जप तप संयम पूरन कालै, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइयै नित त्याइयै, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चालै, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पालै, मंगल चार चोज अनंदा, कर किरपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

आई बेकार बिन से मंदा बिनवंत नानक मिले स्वामी पुरख परमानंदा। कानड़े की वार महला चौथा मूसे की वार की टुनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला चौथा राम नाम निदान हर

फल फलना सलूक महला चौथा हर हर नाम त्याय मन हर दरगाह पावह मान जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुका गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आई सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बहो बहो विद भांत उपावनी सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमती तुदै नावनी जिन होए दयाल तिन सतगुर मेल है मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो जित दालत दुख भुख सब लह जावनी सलोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उरतार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार मन हर हर नाम त्याया विख हूं मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम ना चेतियो तिन जूए जन्म सबहार गुर टुठे हर केताया हर नामा हर उरतार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार वड भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार बिन नावे जे कर्म कमावने नित हों मैं होए खुआर जल हस्ती माल नवाली है सिर पी फिर पावे शार हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख

आपे वर्तै सब जगत किया बणजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा श्लोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सतगुर कै पग पाह सत संगत हर मेल प्रभ

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावे है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावे है सुने है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

चौथा हर कब सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस ते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जप तुझ पंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सत गुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सत गुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुद आपे जगते पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संगारवा।

आरे तुमरे तू बड पुरख पिता मेरा माया रहाउ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत करह तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहू पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरो दिन राति मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचह प्रभ दिखंथे तुम बड़ दाते जी जीन के तुम जान हो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का कहो तिन कहो क्या दिन थे सब तन मन अर्पो अर्प अरापो कोई मिले प्रभ मिल थे हर के गुण बहुत बहुत बहु सुबा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वसगत प्रभ तुम रह जन नानक प्रभ समरथे कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावै हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दरगह प्रभ लेखा मांगै तह छूटै नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हो मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नवाई सब किल विख पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंती अवसर आए बनत है तह राखै नाम साथी जन तेरा जस गाव है हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ जान और कोई निंद करे हर जन की प्रभता का कहे एक तिल नहीं मान रहाउ और सब त्याग सेवा कर अच्युत जो सब ते ऊच ठाकुर भगवान

कह यहाँ की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुग्ध ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहे दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

नारायणे सगल भगत जाचह सुख सागर भावनिध तरन हर चिंतामणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निरभउ जिन श्री राम त्याया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरन जो आए ते जन भावनिध पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक।

परस रे परस परस गुण गाइए नानक तत तत स्यों मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद लवतन मन रंगी शोभा रहाउ ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंदरा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख लागे सगल जपह तरंग।

न सर्वन सुनिय अंग अंगे सुख प्राण रहाव। इते उत दह दिस रवयु मेर तिन है समान। जात कता तत पेखीय हर पुरख पत प्रधान। साध संग भ्रम भय मिटे कथे ना।

दुर्गा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख बनासन।

मन तन जापिया भगवान गुरपूरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाउ सर्ब कार्य सिद्ध भय गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आन न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्ब कटां के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतराई।

जुगत अलक सुख, हर भगत लवै ना लावनो, प्रव दर्श लुभद दास नानक, बहुड़ जोन ना धामनो। कल्याण महला चौथा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रामा राम रामो सुन मन भीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै रहाउ, काष्ट मह ज्यो है बै संतर, मत संयम काढ़ कढ़ीजै, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लीजै, नौ दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजै, किरपा किरपा किरपा कर प्यारे, गुर शब्दी हर रस पीजै, काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजै, रतन लाल अमोल अमोलक, सतगुर सेवा लीजै, सतगुर अगम अगम है ठाकुर, भर सागर भगत करीजै, किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग, एक बूंद नाम मुख दीजै, लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन कौ गुर दीजै, राम राम राम रंग राते, रस रसक घटक नित पीजै, वसुधा सप्त दीप है सागर, कड कंचन काढ़ तरीजै, मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है, हर मांग है हर रस दीजै, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै, तावत ताए तावह प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजै, हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै, राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै, कल्याण महला चौथा, राम गुर पारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ, सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है, नित आसा आस करीजै, हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै, माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगीजै, मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जीव जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हो जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अति उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिस्थीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

जाय। प्रभाती महला पहला तेरा नाम रखन कर्म चानन सुरत तिथै लोए अंधेरे अंधी वापरै सगल लीजै खोए। इहो संसार सगल बेकार तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाओ। पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

कहे ओहना कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जा कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरा नाम है।

सेव जोत कन्नो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जां कै बरत नाही नेम नाही नाही बक बाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जां कै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर परवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कहिए सर्बे रहया समाई जो किस वरतै सब तेरी रजाई रहाव प्रगटी जोत चूका भगवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

रहाउ। पंच तस्कर तावत राखी, चूका माने अभमान, दिष्ट विकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर, प्राप्त पाती तान, दूध कर्म संतोख कियो कर, ऐसा मांगो दान। हिमा तीर्ज कर गौ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला, आवत किने ना राखिया, जावत क्यों राखिया जाई।

जैसे अरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी। जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिसते हुआ सोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हाँ तिस

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी है।

आई जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

कहावे सोई प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पहंदे घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाऊ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबा दे मारिय छूटस साच नाय जिव आया तिव जाय सी किया लिख ले जाय मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाय जग खोटो सच निर्मलो

निझर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

नानक त्रापियो तन सुख होए, प्रभाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मानिया, अवर न रंग नहारा, एहन सजिया देख संभाले।

बिन दुश्मन सा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रहे प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावह चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहा ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मिलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डरपे गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाउ गुरु उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है कीना ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार निह केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी।

करते अवर न करना जाई। नानक नावै जेवड़े अवर न दाता पूरे गुर ते पाई। प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तिन

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु जब लग जी परान गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जय हर का नाम सा।

शबद कमल पर गासिया हम मैं दुर्मत खोई सब नाम है एको सच वरत बिरला दूजै कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खान हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन मान सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछान मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करे ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्ब जिया नो रिजक दिया कली काल में रवे आराम घट घट पूर रहा प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाओ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग घट घट हर भरपूर रहिया नाम रतन तिन्ना हिरदय प्रगटिया जो गुर सरनाई भज पया इंद्री पंच पंचे वासियाण खिमा संतोख गुरमत पावे सो धन धन।

कहया न चित धरै कर आचार बो संपो संचय जो किछ करै सो नरक परै एको शब्द एको प्रभु वरतै सब एकसते उत्पत चलै नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख हर हर जाए रलै प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सहलाए पूरा भाग हुवै मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाउ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदर हो।

हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाईऐ प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गावे है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोल है सब रैन संभाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग झारह हम बाल रहाओ साकत को।

प्रसाद। जप मन हर हर नाम निदान, हर दरगाह पावह मान। जिन जपया ते पार प्राण, रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान। सुन मन हर कीरत अठसठ माजान, सुन मन गुरमुख पावह मान। जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवै पाप खुटान। मिल नानक हर भगवान, प्रभाती महला पंजवां बेपास। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन हर किया तन सब साजिया। पंच तत् रच जोत निवाजिया, सहजा धरत बर्तन कौ पानी। निमख ना वसारहु सेव हो सारग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गति, हरख सोग ते रह निरारा। ता तू पावह प्राण पते रहाओ, कापड़ भोग रस अनक पुंचाए। मात पिता कटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल मीत। सो हर सेव हो नीता नीत, तहां सखाई जह कोई ना होवे। कोट अपराध एक खिन महत होवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के

देवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद। आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहि, तिस गुर की।

सगल त्याग नाम हर जीदा किस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया हलत पलत जिन गुरह सवारिया।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान।

किस पावे सो पल होस। किस गुर को हौ सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम त्याई। ऐसा गुर पाईए वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की सरनाए। प्रभाती महला।

होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल सिंह लागो प्यार बिनसे काम क्रोध अहंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर

गुरपूरा पाइए वड भागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण।

क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवां गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजवां।

संत संगत मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे। प्रभाती महला।

मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से

बाद दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद हे ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सत

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाना क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछाना राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाना बोली भाई सुपाई जो किछ वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत

पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपी,

त्रै मिल जगत पाया, ऐसा बल चल तिनको दिया, हुक्मी ठाक रहाया। ऐसे जन विरले जागे अंदर, परख

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

यह ज्ञान रतन प्रगट होए मनमुख मूल ना जाननी मानस हर मंदर ना होए हर मंदर हर जियो साजे।

जन निर्मल हर कै नाम समाई, हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार, हर मंदिर में मन लोहट है मोहया दूजै पाई, पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई, हर मंदिर में हर वसै सर्ब निरंतर सोई, नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होय, प्रभाती महला तीजा तै पाए जागे से जन जागरण करह हऊ मैं मैल उतार, सदा जागह कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ह मार, मन मेरे गुरमुख नाम त्याय जित मार्ग हर पाई, मन से ही कर्म कमाई रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाई, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई, गुरमती मुख सोहणी हर राखिया उर तार, ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार, हो मैं विच जागरण ना होवई

टिक एक सकी सिर छाह वद पुरख स्वामी रहाउ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराय अमृत नाम मन रहया अघाई लोभ मोह स्यो गई विखोट गुर कृपाल मोहि कीनी छोट एह ठगवारी बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यो ठाट न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिबलाय इन लोगन स्यो हम पये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहु तपावस प्रभ सरबाग प्रभ

आसोए, तिस बिन बीजो नाई कोए, बैर बरोध शेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांड लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तथाई, जह सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो परस

जो किश हुआ सो तेरा पाना, जो इव बूझे सो सहज समाना। कहत कबीर किल बिख गए छीना, मन भया जग जीवन लीना। प्रभाती अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर।

कहिए सोई। अल्लह अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब ने रंजन दीठा। प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना बिचारे। जो सब मह एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई तेरे मन का भरम ना जाई रहा। पकर जियो आनिया दे बिनासी माटी को बिस्मिल किया। ज्योत स्वरूप अनाहत लागी कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह धोया क्या मसीत सिर लाया। जो दिल में कपट नवाज गुजार हो क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया तिसका मर्म ना जानिया। कह कबीर पिस्त ते चूका दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर अदपत याद समाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पहाई। ठाडा ब्रह्मा निगम बिचारे अलख ना लखिया जाई रहाओ। तत तेल नाम किया बाती दीपक दे उजियारा। ज्योत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी संगे सारिंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्बाणी।

है आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ता की अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म लुका।

आपै जो किश किया सो आपै आपै प्रणवत नाम देओ एहो जियो चितवै सो लहै अमर हुए सद आखुल रहै प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन चंदन मस्तक पाती हृदय अंतर कर तल काती ठग दिष्ट बग्गा लिव लागा देख वैष्णो प्राण मुख भागा कल भगवत बंद चिरामं क्रूर दिष्ट रता निस्बादं रहाउ नित प्रत इशनान शरीरं द्वे धोती कर्म मुख खीरं हृदय छुरी संध्यानी पर दर्भ हिरन की बानी सिल पूजस चक्र गणेशं निस जागस भगत परवेशं पग नाचस चित अकर्मं ए लंपट नाच अधर्मं मृग आसन तुलसी माला कारी उजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं।

कारण करते वस है जिन काल रखी धार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे

बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो परसन माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सोभंत बस्तरा हित्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं हर

वरतंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत ज्ञानं बख्शीदे है बुधा कुशल थानं बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं।

परवित माया संबंध न है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्ब जी प्रतपाल कह, अनित्य है वितं अनित्य चितं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जिलंत दे दीप्य भैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन न सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निरतन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निरतनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है भगत वच्छल करुणामय घट घट बसंत वासदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहोते दानं परापूर्वेण पूचलते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते दृथा अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान पंग।

मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमरता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन

जीहि पणिज्यो उत्तम सलोक उदरण नैन नंदनी गुरमंत्रहीन जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है कुकर है सुकर है गर्दब है काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजन हृदय नाम धारण है कीर्तन साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राज है नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग

प्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तै पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते।

साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोबिंद नित प्रत है तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वर है करन कारण समर्थ है दान देत प्रभ पूर्ण है निराश आस करन सगल अर्थ आलिय गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भव है पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभमय साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं के अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है एकामं नरक विश्रामं बहु जोनी परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है तब पै विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अधमं नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं

त्रिडंत अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्रयान ध्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यम पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे।

उत्तर है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वच्छल अनाथ नाथी,

जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतपालं नह सिदंत जठर रो।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धिहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथा रा।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटांब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रियतवं सात हतं परम बादं वर्त इत है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरंग सहकंगता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊणंगता परियंग अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है।

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्ध अंग बड़ भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो

आप ज संग मटंत सत पुत्र है, सिमरतव्य है हृदय गुरमंत्रण है, प्रीतम भगवान अच्युत, नानक संसार

मुख हूं तोहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहां, हरपी सब सिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सो कंत बछाई, हर हां मस्तक होवै भाग तां साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सबै किस साजिया, सोलह किए श्रृंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवै कंत तां सब किछ पाई है, हर हां कंतै बाज श्रृंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे, तिस बनिया हब श्रृंगार साई सुहागणे। हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया, हर हां जा घर आया कंत तां सब किछ पाइया। आसा इती आस के आस पुराइया, सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया, हर हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया, दुत्त

है सच तना सुपना ऊ भी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदा संदा संग इकट्ठा होया औख दे आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे।

प्रेम की दम के हो होती साट रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जानी मरत हिरत संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल।

आहे। नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहु जाहे। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल। नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार। मूसन मगन मरम सिंह खंड खंड कर हार। मगन भयो प्रिय प्रेम सिंह सूद ना सिमरत अंग। प्रगट भयो सब

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आ।

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया शास पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्भ ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी उपर।

हुई। अजो सोना उस मंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग। आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बनज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

थोड़ा जल माछुनी चीवर मेले ओ जाल ए टोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

फैसलों की कुकर भली साकत की बुरी माए ओ नित सुन हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए कबीर हर

घर करह पीवह निर्मल नीर बिन हर भगत ना मुक्त होए यूं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर।

होर काया हांडी काठ की ना उह चढ़ वो होर कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोरा लीन कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए अवगुने आरे मानस है भलो ना कह है कोय कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट गुर जो ना चेत है अपनो अदमहा

या कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाए, कबीर ऐसा को नहीं

सती पकार चेह चढ़ी सुन हो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए कबीर जा को खोजते पायो सोई ठोर सोई फिर कह तू पया जा को कह पाय और कबीर मारी मरो पसंग की।

आए जिन हर का नाम ना चेते हो बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक पर है ते।

ज्यों की भूसी खाओ। हुन हार सो होए है साकत संग ना जाओ। कबीर संगत साधकी दिन दिन दूना हेत। साकत कारी कांबरी तोए हुए ना सेता।

हर जंत बचारा क्या करे चले बजावन हार। कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम।

किए राखे तलै दुराए परगट भये निदान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमर।

वीर हर का सिमरन छाड़क रात जगावन जाय सरपन होए कै औतर जाए अपने खाय कबीर हर का सिमरन छाड़क ओह ही राख नार गद ही होए कै औतर पार सह मन चार कबीर चतुराई अत घनी

जा मुख कहिए राम देही किसकी बापुरी पवित्र हुए गो ग्राम कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या पली जो हर सिमरत दिन जाय कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाई है,

रात जो नर बिसरे राम सिंह ना दिन मिले ना रात कबीर रह नायर बिछोरिया रहो रे संख मचूर देवल देवल ताहड़ी देस है उगवत सूर कबीर सूता क्या करह।

कारण सो भयो जो कीनो करतार तिस बिन दूसर को नहीं एक सिर जनहार कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम जाए पहुंचे है खसम को।

की स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओभरी मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कांठे रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा ताम कबीर साकत ते सूकर भला राखे आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाम कबीर कौडी कौडी जोर।

बाहर कंचन बारह भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का ताज मन का अपमान, ऐसा कोई दास हुए ताहे

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही भुए मिल गया पढ़िया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा मह चूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाई है फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुजै

हाथ जब ही पाई है पारखू तब ही रन की साठ कबीर काम परे हर सिमरी है।

बहीर एक अवघट घाटी राम की तेह चल रहे कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किस काल आज सी जब

असंत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जानै नाही कोई कै जानै आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी।

बिन के बिन मिले पलट भई सब खेहे जह अनपौ तह पै नहीं जह पौ तह हर नाही कहियो कबीर बिचार कह संत

पास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत।

कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतकहार कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक है मिल गया एक समाना एक कबीर जा कर साधना सेवी है हर की सेवा नाए ते कर मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार कबीर निर्मल बूंद आकाश।

मन में पल्ला ना पकड़े कोई, कबीर धरती अर आकाश में दुए तू बरी आवद, हट दर्शन संसे परे हर चौरासी सिद्ध, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं।

हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू कभी।

दास कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्व ली पावनी प्रगट होई आए कबीर टालह टोलह दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना ब्या

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय लै।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाही है जे सबना सार करे महला पंजवा कबीर राम ना चेतेउ फिरया लालच माहे पाप करमता।

नाम जानियो नहीं पाल्यो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब कबीर आखी केरे माटके

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साद है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए ठाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

लोहिन कर रहूं ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाही आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोहिन क्यों करो सब घट देखो पियो सुन।

ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारों बेदोह माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर,

काची सरसों पेल के ना खाल पई ना तेल, टूंडत ढोल है अंधगत हर चीनत ना ही संत, कह नामा क्यों पाईए बिन भगत हो भगवंत, हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख है रविदास, कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर नाही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करह ता को बड़ो अपाग। सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जित दिहाड़ धन वरी।

आए गहला रूह ना जाने सिर पी मिट्टी खाए फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ मां क्यों मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद।

कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजे सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू के रे कम। फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मार।

कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वन कै सर लोहार फरीदा हो लोड़ी सहु अपना तू लोड़ है अंगियार फरीदा इकना आटा अगला इकना ना ही लोण अगे गए संजापसन चोटा खासी कौन पास दमामी सत सिर भेरी सजो रड जाए सुते जीरान मह किए अतिमा गड फरीदा कोठे।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दरवेसा नू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही।

वत कुवारी ना थी कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवह उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

आस फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरीसता कै घर नाथी अज

पंजे वक्त मसीत उठ परिदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवै

तैं पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण हो हे फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संधि पाही महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई नाहे फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए फरीदा पंख परहोनी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली मांझ वसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुमनड़ी दे विरले के पाईन

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा हुए रह सब जग तेरा होए कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर फरीदा कच्चे पांडे रखिए किचर ताई नीर फरीदा महल न सखण रह गई वासा आया तल गोरां से निमाणिया।

जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर तां वासिया भी कंत मत हुंदी होए इयाणा ताण हुंदे होए नताणा अण हुंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए।

कार करण कारण सब आपे सर्व रहो भरपूर सगल घट रहो ब्यापे व्यापत देखिए जगत जानै कौन तेरी गत सर्व की रख्या करै आपे हर पत अवनासी अवगत आपे आप उत्पत एकै तू ही एकै अन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करै विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक

बल बल सद बलिहार अमृत परवाह सर अतुल भंडार भर परै ही ते परै अपर अपार पार अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओपत परलो एकै निमख तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहि नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जीहि क्या बखानै हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे उस

आप ही तारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानं।

कै सूत है जहानंग, कवन उपमा देओ बड़े ते बडानंग, जाने कौन तेरो प्यो अलाख अपार देओ, अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानंग, जन नानक भगत दार

अकार अकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पनिये दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब

पव जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दर्स मन चाऊ भगत इहो मन ठहरावे, बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगत सगल हर पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हरतानी बलवंच छाप करते उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी सील।

कहो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पाऊं।

नानक काट परम परी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपन।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख उल्टत जात बिरख की शारु दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरु अगम अपारु श्री पतनाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई

सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अरदानव एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत। माया रंग बरंग करत ब्रह्म, मोह कै कूप गुबार पर्यू है। एता गब आकाश न

अस्त क्रिम उदर भरियो है। दह दिस ताई महा बिखिया को, पर धन शीन अज्ञान हरियो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रसियो, जम दूतन दन मृत मरियो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत, सासन दुख गर्त गरियो है। प्रेम भगत उदर है से नानक, कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सोच किरिया, चरण कमल हृदय प्रवतारी। साजन मीत सखा हर बंदप, जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है, नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात, विदे मन दर्श मग। पावक जरियो ना जात, रहियो जन तूर लग। नीर ना साकस बोर, चल है हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, छिदे हर नाम खग। उदम कर लागे बहु पांति, विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ। भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंद है बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पांत।

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सदादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निरवैर रिदंतर श्रिष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो

कुन तब जन कल बखानियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मान्यो सत जोग तै मान्यो छलियो बल बावन पायो त्रितै तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल।

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिर।

ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਨਹਿਣੀ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ।

है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रदान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जीन सर्व सिद्धि कव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मबल सरा उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाद हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाज समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अमरीक भवजन तरिया।

जानियो। सुपन एक प्रतख एक इकस महलीनो, तीस एक अर पांच सिद्ध, पैंतीस ना खीनो। इको जे लाख लखो अलख है, एक एक कर वरनियो, गुरु अमरदास।

गुरु अमरदास परसी सिद्ध साधक असास है। गुरु अमरदास परसी है ध्यान लही है पौ मुक है। गुरु अमरदास परसी है अपौ लब्बे गौ चुक है। एक बिन दुग

सो दृढ़ नानक संग रहियो ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन आप नारायण कला तार जग मह परवरियो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अब

जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाए भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार नानक कुल निम्मल अवत

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म।

सनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनख कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिख

इव जुद्ध कार कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सत

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सर अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसे अमै रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दूर अंतर नासे सुख सागर पायो दिंत

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै।

सू है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल।

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

दस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे यो जनक राज।

खिन मात्र जा कौ दृष्ट तारै शब्द हृद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान

ज्ञान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो वै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो वै जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

कार अकथ कथनहार तुझ है बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत।

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास। सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास। राड

क्या कीजै जान गुरु होए बल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चह कार।

यो ते अकियत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाध शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान।

पूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

शब्द हर हर जपै नाम नाव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

अखै निध अपियो, अपियो हर नाम अखै निध चहु जुग, गुर सेवा कर फल लहियन, बंद है जो चरण सरण सुख पावे है, परमानंद गुरमुख कहियन, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखण भरन, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारन तरन, जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है, कर बेचित चाओ आनंद नित मंगल, गुरदर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुरदर्शन, परसन परम पवित्र गति, जीता है जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन शिव गुर ज्ञान रते, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार, मुन बंच है जाकी सरनं, सतगुर गुर सेव अलख

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है स्नान स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन

कहत माँ जसोद जिसह दही पात खाहे जियो। देख रूप अत अनूप मोह महामग पई, किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरुष।

ठमाल मुकट सीस मोर पंख चाहे दियो देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम खेल किया अपने उशाहे दियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहे आसमाए सुतह सिद्ध रूप धरयो साहन कै साहे जियो सत साच श्री निवास आद

सबल मलन भगत फलन कान कुवार निह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रमन दुर्त दवन सकल भवन कुशल करन सर्ब भूत आप ही दिवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जन्म कर्म मछ कछ हो बराहा जमना कै कूल खेल खेले ओ जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार ताजब

ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित बड़ो कल।

कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मन गह नात जात कबलास को जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहों लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह ज्यो कुसुम सुबासे विदह मान गुर आप थप्यो थिर

धरियो गुर हाथ, तीन भवन भरपूर रहियो सोई। आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो। सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर। गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अच्छा।

जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणंग इनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं बाचा कर सिमरंत तुझै।

तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्स परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो जेहे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिट है खिन जेहे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेहे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेहे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेहे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन

सिखत अत हुए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानियो, तीनी भगत प्रेम लिवलाई। तांते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब्द सुरत की नीम रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी

लोभ अपमान सिंह झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो काल जोड़ कर सुजस वखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभव ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आली।

लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायु पारस परस परस परस गुर गुरु कहायु भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कलयुग जहाज।

देखियत ताम स्यों अपार परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही औरै काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व मह अर्जन गुर भगत कै हेत पाई रहो मिन राम स्यों अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महा तम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर।

अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जानियो भयो ते समसर सोई।

गुरु अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुरमोयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जम पहै।

किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंड ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर लाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

पोछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यो अलाए बेड़े डुबण नाहे पौ नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहयो कोई।

जस रस कस ना जानंत इक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सार अखर का पियो ना लहंत नानक ते नर असल खार जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संयम कमावै कर्म सील संतोख का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुकत सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर खेत पछाणै बीजै दान

जो देवै सो देवै नाही खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां जैसेती मेरा संग।

वह सदा सदा सुरती ही पत होए। सर्प है सर्प है सदा सदा एव गई विहाई। नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाए। दोष ना दे ओ राए नो मत चले जा बुढ़ा होए। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोए। पूरे का किया सब कुछ पूरा कट।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाण जो चलै तिपतासै हर गुण गाए तन तन कल युग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उर धार तिग तिन्ना का जीविया कित आए संसार गुरमती भउ मन पवै तां हर रस लगै प्यार नाउ मिलै तुर लिखिया जन नानक पार उतार माया मोहि जग भरमिया।

जिव है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊग ना भूख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए

अंधले तिसमह अग्नि का वास, वाणी सुरत न बुझनी, शब्द न करह परगास। ओना अपनी अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन न करह विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की राखदा, हौं सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक ता का दास। माया पुयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए। बिख का मारन हर नाम है, गुरगरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर्मल होया, बिख हूं मैं गया बिलाए। गुरमुखा के मुख उज्जले, हर दरगाह सुबा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तिन, जो चल है सतगुर पाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, नित हिरदय हर लिब लाए।

जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट

सुजई ना सुजै दरबार। माया मुहि पलीटिया अंतर अज्ञान गुबार। तब नर सुता जागिया सिर डंड लगा बहु पार। गुरमुखा करा उपर हर चीतिया से पाइन मूख द्वार। नानक आप उहे उदरे सब कुटंब तरे परवार। शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे। हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द मुआ है सब कोई। मन मुख मुआ अपना जन्म खोए। हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह। दुख सुख एक समान, तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान। मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही। विच हौ मैं कर्म कमाम दे, सब धर्म राय कै जाही। गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुभाई। ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई। मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई। नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई। बुरा करे सो केहा सिजै, अपने रोहे आपे ही दज्जै। मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै, गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

हर जग जीवन उर धार, नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चै दरबार। हर मंदर हर साजिया,

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

भाई अपनी पत के साध आपे खाई किसका क्या सलाही है भाई दर्शन को बल जाई सतगुर विच वडियां वडियाईयां भाई कर्म मिले ता पाई एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फराई संगत ढोई ना मिले भाई बैसन मिले ना खाऊ नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिन्ना तुरे कमाया नाउ तिन विट हो हों वारिया भाई तिन को सद बलिहारै जाऊ से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन अन दिन सेवन गुर अपना अन दिर हन नानक से मुह सोहणे सच्चै दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोलहे सच कमाहे सच्चा शब्द मन बसिया सतगुर माहे समाहे सच्ची रासी सच धन उत्तम पदवी पाहे सच सुनहे सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगाह बैसना सच्चे माहे समाहे नानक बिन सतगुर सच ना पाईऐ मन मुख भूले जाहे बाबीहा प्रियो प्रियो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले सीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुकै सहज उपजै चुकै कूक पुकार नानक गुरमुख

तन मन सुख होए जा तत बूंद मुहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गाव हुकामणी सच्चै शब्द समाए। भय का सहज श्रृंगार करहु सच।

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसके पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचे अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाय हर गुठा मन तन सब परफड़ सब जग हरियावल होय शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होय नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोय नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोय हर उठे मन तन परफड़े सब जग हरिया होय वडड़े चाल चाल चलंबले

जोग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे भवै वेद पढ़ै जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावै मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरै चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछै मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम सुमाए। वाहो वाहो सत गुर पुरख है जिन सच

जिसनो समत सब कोई, वाहु वाहु सतगुर निर्वैर है, जिस निंदा उस्तत तुल होए, वाहु वाहु सतगुर सुजान है, जिस अंतर ब्रह्म विचार, वाहु वाहु सतगुर

नानक सतगुर वाह वाह जिसके नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूरन

हो, क्यों सज्जन मिलह प्यारिया, औंट नेंदी तिन सज्जन सच सुआरिया। सतगुर मैं डा मित है, जे मिले ता एहो मन वारिया।

काफर माया मन ना सकी दुत्तर तरिया ना जाए नदर करे जिस अपनी सो चले सतगुर पाए सतगुर का दर्श।

आया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाइए अन दिन रह आनंद नानक सहज समाइए।

कर नानक लेहो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

भव जल तरै संसार, मन चिंदिया फल पाए सी, अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए, सब दुख निवारण हार, मन मुख सेवा जो करे, दूजे पाए चित लाए, पुत कलत कुटंब है, माया मोह वधाए,

हुक्म आरादि हुक्मे समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया फल पाए सदा

हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हो फिरा पी हिरदै रखा संभाल जिन्ना एक मन एक चित त्याया सतगुर सौ चित लाए तिनकी दुख भुख हो मैं वड्डा रोग गया निर्दोष।

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग

आए जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर शरनाई उबरे नानक लय छाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो पौजल।

हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लगई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

ਪਾਏ ਸਭ ਕਛ ਤਿਸ ਦੇ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

जिस पास बहते आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलूक महला नौवा, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन। बिखियन स्यो काहे रचियो निमुख न होए उदास। कहो नानक भज हर मना परै ना जम की पास। तरन आपो इउं ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं

ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜਿਹ ਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਣ।

नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान हर जन हरे।

निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चितर ज्यो, छादित नाहिन पीत, नर चाहत काचे और है की और है पई, चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए, कहो नानक सुन रे मना, हर पावे सो होए।

नानक थिर नहीं कोई, जो उपज्यो सो बिनस है, परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे,

गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार।

रूप तिथे घट कड़ी है बहुतानूप। ता कियां गल्ला कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पिछताए। तिथे कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़ी है सुरासदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जो

तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबलसूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

आओ जप तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ति।

वासा अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मेर साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साक तहारा साधना जानिया तने अंतरा हम मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुबै दुख पावै जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है।

संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटे दिन सुरण आरे, मन गुरमिल का सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी।

अगै गया जानी है मिणा मैं बेकार, पै तेरा डर अगला खप खप छिजै देह। नाव जिन्ना सुल्तान खान होंदे डिठे खेह, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। श्री राग महला पहला सब रस मिठे मने है सुनिया सा लोने। खड़ तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए, शक्ति अमृत भाओ एक जा को नदर करे। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ रत्ता पहनन मन रत्ता सुपेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान। कमर बंद संतोख का तन जोबन तेरा नाम, बाबा होर पहनन खुशी खुआर। जित पै दै तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ घोड़े पाखर सोयने साखत बूजन तेरी वाट, तर्क स्तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात। वाजा नेजा पत्स्यों प्रगट,

सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार, जां पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए, ओना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए, नाउ पूजियै नाउ मनियै अखंड सदा सच सोए, खेहू खेर लाइयै ता जियो केहा होए, जलियां सब सियाण पां उठी चलिया रोए, नानक नाम विसारिया डर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

सब मुठ्ठी हंकार राओ। जिनी नाम विसारिया दूजी कर लग, दुबदा लागे पच मोए अंतर तृष्णा अग। गुर राखे से उबरे होर मुठी तंदै ठग, मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध। तंदा थका हो मुई ममता माया क्रोध, कर्म मिले सच पाई है।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे है, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है, हमें निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है, लिख पढ़ बुझै पार। तृष्णा अहनस अगली, हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा, गुरमत कीमत सार। लक्ष्य आण पजे करी, लक्ष्यो प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया, बिन नावे दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी, गुरमुख जी न आप। तन मन गुर पै वेचिया, मन दी असर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मिलाया, नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सर्व जिया प्रतपाल ही, लेखे सास गिरास।

मन बैरागी घर वसै सच पै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बाहुड़ भूख ना होए नानक एहो मन

त्रोए खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए। खोटे जात ना पाता है खोट ना सी जिस कोए। खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह। आराम नाम रंग रतिया भार ना भरम तिनाहा। हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा। श्री राग महला पहला कर दूजा तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। पबन केरे पत ज्यो टल टुल जुम्मन हार। रंग मान लै प्यारिया जां जो

करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवानो।

जाले सुपने सुखना देखनी बहु चिंता पर जाले। सबना का दाता एक है आपे बस करे। कहना किशु ना जा वही जिस पावे तिस दे। नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए। श्री राग महला तीजा सच्चा साहेब सेवी है सच वड़ियाई दे। गुर प्रसादी मन वसै हो मैं दूर करे। ओह मन ता अवतार है जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखार नाम ते आए। नाम निधान सद मन वसै महली पावे थाओ रहाओ। मनमुख मन तन अंद है तिसनो ठौर ना ठाओ। बौजो नी पौंदा फिरै जो सुन्या कर काओ। गुरमति कट चरना शब्द मिले हर नाओ। त्रै गुण बिखिया अंध है माया मोह गुबार। लोभी अन कौ सेम दे पड़वेदा करै पुकार। बिखिया अंदर पच मोए ना उरवार ना पार। माया मोह विसारिया जगत पिता प्रतपाल। बाजहो गुरु अचेत है सबदी जमकाल। नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम संभाल। श्री राग महला तीजा त्रै गुण माया मोह है गुरमुख चौथा पद पाए। कर कृपा मेलाया नु हर नाम वस्या मन आए। पोत्या जिन कै पुन है तिन सतसंगत मेलाए। पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिस पावै सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द में लावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदन दुख विहानी, मन मुखे अंद न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विचहु मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मन मुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा या तो सुखाली, जो इच्छा है सो फल पाए, जात सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हौ तन कै बल जाओ, दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंत न आवई, नित नित होए खुवार, पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ गुरमुख सदा सुहाग।

अंतरों दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोए। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा, जा फिर जाना अपना तन मन अगे धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई।

आओ आपे जग जीवन सुदाता आपे बक्स मिलाए जी जानते क्या विचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ाई आपे सेव कराए दे कुटा मोए लोभाना चलद्या नाल न जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जो दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलया आए गुर शब्दी साला ही है रंगे सह सुभाए सच्चे सच समाया मिल रहे ना विछड़ जाए जो कुछ करना सो कर रहा अवर ना करना जाए चिरी विछुने मेलिया नो

में अगली मनुआ रजा सही सुभाए, गुर का शब्द अमृत है जित पीता है तिख जाए, एहो मन साचा सच रता सचे रहा सुमाए।

कुदम करे पशुपंखिया दिसै नाहीं काल, ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल, जो कर छट गवावना सो लगा मन माहे। जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे, फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए, चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए। नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए, श्री राग महला पंजवा। कड़ी मुहत का पाहुना का स्वर नहार, माया काम व्यापिया समझे नाही गावार। उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार, अंधे तू बैठा कंदी पाहे। जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे। रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार, लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार। जा होवा हुक्म किरसान दा ता लुण मिणिया खेतार, पहला पहर धंद गया दूजे पर सोया, तीजे चाख चखाया चौथे पोर पया। कदी चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया, साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान। जिस ते सोजी मन पई।

जातो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेणका अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवै भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रव आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले उपाव त्याग। गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थन अंतर आप, जी जंतो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रवेक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुरदर्शन देख निहाल, थान थन अंतर रव।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवां, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन कियां इच्छा पूरियां, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भक्त जना को राखदाया।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए नेदारा आधार। जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवे सांत एक मन एक ते आईए मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिए।

हऊ मैं रोग भ्रम कटिया ना आवे ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगह पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किच सही हाथ, मारा पे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल, सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निम

सौ सेव तू सावरडै सुखवस गुर मिल चाजिया चार सिख तुद कदे ना लगे दुख सबना साहुरै वंजना सब मुख लावण हार नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार श्री राग।

कहो नानक गुर परम काटिया। सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा। दोकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोहूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुरो सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी, तू वड पुरख सुजाना। रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कश नजर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा घर सतवां।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वडियाईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बिबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर के

तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वेस रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साज

अंबड़ कोई न सकई, हों किसनों पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ प्रलावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै बस।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुट सी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नर सुहावनी मैं भावै प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिनसा चे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दा सिख होए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ वेणरा सीवा पारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझै अपना वस्त्र ही कर बार वेण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त्र लहै कर अपने चलै कार्ज सार वणजा रिया स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ै जिस अंतर ज्योतिया पार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपवन सो प्रभ जानिया साचो सच नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ

संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण रव रह ना तिस्काल संताए साहेबा तुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वाह पारी बन जा रहा आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै र जाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस दिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सचत राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तो लाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइये रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाइये सर प्यार मुक्त पदार्थ पाइए अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावै सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल

दुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेविए गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईए पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटिए गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारिये पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़िए पी विकसै असनेह जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुख कणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरियावले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देहे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सो जी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हो मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिय शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पिछाणिय अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवरना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुले भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना पर्यंक समाए रहाओ पुली फिरै जसंतरी पुली गृहता जाए पुली डूंगर थल चढ़ाए परमे मन डोलाए तरों विशुनी क्यों मिले गर मुठी बिललाए विछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यो पावै त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार सात अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए।
ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਆਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਅਪਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤਬੰਧ ਪਕਰਨਾਰ ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਹਉ ਮੋਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਏ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵੇਖ ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖ ਆਖਣੇ ਆਖੇ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰਬਿਨ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਰਪੈ ਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੇ ਪਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਈ ਛੁੱਟੀਐ ਮਨਮੁਖੋਟੀ ਰਾਸ ਅਹਿਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾ

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे, नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाईए सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर नहीं चल पाईए ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिर समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वही बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेट भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीचित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके पेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गावया थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भगति उपजै सहज पैर प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए सहजे ही गुणी उचरै भगत करे लिवलाए सबदे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया सशरण आई पाए सहजे ही हर नाम वसया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पर ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर विचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर, माते दुगणे पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सदगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुर्ग मच पयाल जियो, हौ वारी हौ वारणै, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले है परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तुद खोआया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग

के नाही जियो, दुहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथियां फिरै निमाणिया, मैले वेस्त ना कामणी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कै अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्हां नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सही आसे सुहागणी, जिनसै नाल प्यार जियो, जिन्ना पाणे का रस आया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी है, जो सबसे ले मिलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दुकटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिया, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हाउ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो।

हौ आया सा मैं ते हंडिया, पंज किरसान मुजेरे मिंडिया, कन कोई कड ना हंगई, नानक बुठा को गगराओ जियो, हौ वारी कुम्मा जामदा, एक साहा तुद ते आएंदा, उजड़ थे हो वसायो, हौ तुद विटो कुर्बान जियो, हर इठे नित ते आएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा, सबे काज सवारे अन लाहियान मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गोसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा शेक जियो, मैं सुखी हूं सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख वेखा लिया, मस्तक तरक हथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुरसिखा लेंदा पालक, पैर धोवा पखा फेरदा, तिस निम निम लगा पाए जियो, सुन गल्लां गुर पै आया, नाम दान इस नान दृढ़ाया, सब मुक्त होवा सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाढ़ जियो, सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो, ठोक वजाए सब डिठिया, तुसी आपे लयन छड़ाए जियो, हुण हुक्म होवा मेहरबान दा, पै कोई ना किसै रजाण दा, सब सुखाली उठिया, एहो होवा हले मीरा राज जियो, चिम चिम अमृत वरसदा, बोलाया बोली खसम दा, बहुमान किया तुदी उपरे, तू आपे पाए थाए जियो, तेरिया भगता पुख सद तेरिया, हर लोचा पूर्ण मेरिया, देहो दरस सुखदातया, मैं गल विच लहो मिलाए जियो, तुद जेवड़िया वर ना पालिया, तू दीप लो पया लिया, तू थां थन अंतर रव रहया, नानक भगता सच आधार जियो, हां गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच दुमलड़ा, सब होई छिंज इकठिया, दईये बैठा वेखै आप जियो, वात वजन टमक भेरिया, मन लथे लैंदे फेरिया, नेते पंजवान मैं गुरथापी दित्ती कंड जियो, सब इकट्ठे होए आया, कर जासन वाट वटाया, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो, तू वरना चिहना बाहरा, हर दिसे हाजर जाहरा, सुन सुन तुझे ते आएंदे, तेरे भगतर ते गुणताह जियो, मैं जुग जुग दईया सेवड़ी, गुरकट्टी मेंडी जेवड़ी, हाँ बाहुड़ छिंज ना नचौ, नानक अवसर लद्दा पाल जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला, पहरे कर पहला, पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा, हुकुम पया गरबास, उर्द तप अंतर करेवन जा रहा मित्रा, खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास वखाणा, उर्द ध्यान लिव लागा, ना मर जा दाया कल भीतर, बहुड़ जासी नांगा, जैसी कलम वुड़ी है मस्तक, तैसी जीअड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुकुम पया गरबास, दूजे पहरे रहन

तन जो बन सो चित हर का नाम ना चित ही बन जा रहा मित्रा। बद्दा छुट्टै जित हर का नाम ना चित प्राणी, बिकल भया संग माया, तन स्यों रता जोबन मत्ता, अहला जन्म गवाया। धर्म से ती व्यापार ना की तो कर्म ना की तो मित, कहो नानक तीजै पहरै प्राणी, तन जोबन स्यों चित चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा। लावी आया खेत, जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा, किसे ना मिलिया भेत, भेत चेत हर किसे ना मिलियो, जा जम पकड़ चलाया, झूठा रुकन हुआ दुआले, खिन मैं पया पराया। साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुनिया खेत।

मात पिता सुत ने कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कर कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई स्याणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिया वन जा रहा मित्रा ले

तर पाए ता उदरै माहे दसी मासी मानस किया मन जारिया मित्रा कर मोहलत कर्म कुमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कुमाने जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सुकर्म कराए आपे इस जनता वस किश नाहे कहो नानक प्राणी पहले पहरै तर पाए ता उदरै माहे दूजे पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाण ही बन जा रहा मित्रा मन मता अहुमे बुरा भला ना पछाणै प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कभू ना सेवया सिर ठांडे जम जंदारा धर्म राय जप क्रस बवरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिक संचय अंध ज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपटे आवन जा रहा मित्रा अंतर लहर लोवान अंतर लहर लुभान प्राणी सुप्रभ चेतना आवै साध संगत स्यों संग ना किया बहजो नी दुख पावै सृजनहार विसारिया स्वामी एक निमख ना लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजै पहरै बिक संचे अंध ज्ञान चौथे पहरै रहन कैवन जा रिया मित्रा दिन नेड़ै आया सोए गुरमुख नाम समाल तू मन जा रहा मित्रा तेरा दरगह बेली होए गुरमुख नाम समाल प्राणी अंते हरना अंते होए सखाई एहो मोह माया तेरा संग ना चले झूठी प्रीत लगाई सगली रैन गुदरी अंधारी।